उसे इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

0: We'll be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM. You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं हिफाजत सिर्फ एहतियात में
2: 101 FM
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं बच्चे बूढ़े खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें रेडियो टीवी अखबारात फोन एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें हिफाजत सिर्फ एहतियात में
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: Entertainment, ho ya updates, yeh hai tumhari har mood ka dost.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: This is FM 101, where your spirit is set free.
2: 101 FM.
3: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM. You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: Entertainment, ho ya updates, yeh hai tumhari har mood ka dost.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: This is FM 101, where your spirit is set free.
2: 101 FM.
3: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाएं तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

0: the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, mere of course, assalamu alaikum, ahle Pakistan. Janab se mukhatib aapka host, aapka dost, DJ Sahil Sign again. Aur janab, kaise hain aap tamam log? Yakin hai theek thaak hain, wane fit hain, mazey mein, khoob enjoy kar rahe hain apni zindagi ko. Aur ye thoda sa mamla jo hai wo theek karne hain, aur wo maine kar diye hain. Ji, mujhe kehte hain sahib Mason maujood hain. Ji.
1: The one and only.
0: Aaj Rebecca.
1: Assalamu alaikum listeners. Hope you're doing well.
0: Naam to suna hoga. Aisi aap usaka battery ji.
1: Kya soche na, mujhe unknown numbers se messages aa rahe hain. Main aapki fan, aap unse baat karengi.
0: Ji, aisi hai.
1: I'm sorry, log kyun number viral kar dete hain? Come on guys.
0: Acha, aapko to unknown numbers se aa rahe hain. Meri ek tasveer kisi ne kal lagayi hui thi aur kehte hain main Sahil bhai ko kab se sun rahi hu, ye wo mujhe bada acha laga.
1: Oh cute. Mujhe acha laga. Jannat hai. Jannat, very good. Aur ye pata hai, tareef aur appreciation जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको एक तो आपको किसी का नंबर, आप किसी को जानते नहीं, आप मुझे बताएं, अगर आप किसी को सुनते हैं या किसी को देखते हैं या किसी के साथ काम करते हैं और आपको उनके साथ ऐसा, आप सोचें मुझे अननोन नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं, हम फलानी हैं, हम आपसे बात कर, मर्द भी तो एक औरत का नाम ले सकते हैं. मुझे इतना बुरा लगा है और मैं मतलब लिटरली मैं भी साहिल से आते हुए ये कहती थी कि मैं आज ऑनर इस बात को जरूर कहूंगी कि अनलेस कि किसी ने आपको अपना नंबर खुद नहीं दिया,
0: बिल्कुल,
1: या आपको उनसे काम नहीं है, खुदा रहे इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए. ये बहुत बहुत बुरी बात. क्यों आवाज नहीं आ रही?
0: बोल
1: रही
0: है? नहीं, वही साइड थी.
1: यही है
0: जी, यही
1: साइड. आपका माइक ठीक नहीं है प्लीज.
0: हाँ, मेरा नहीं है, रेडियो पाकिस्तान FM 101.
1: मैं रेडियो को कुछ नहीं कह सकती, मेरे 2 महीने के पैसे पेंडिंग है.
0: अच्छा भारल जी, कोशिश करें कि जब आप किसी से भी आपका वास्ता ताल्लुक है तो वो तब तक उसके साथ उतना आपको लिबर्टी हासिल नहीं करनी चाहिए जब तक आपके उसके साथ ताल्लुकात उस तरह से ना हो.
1: इवन मेरे कितने लिसनर्स हैं, पता साहिल, वो डीएम करते हैं, मैं उनको मैसेज का रिप्लाई भी करती हूँ, तो इसका मतलब है कि वो मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप ही हम आपसे बात करना चाहते हैं, मैं रिस्पॉन्स करी तो मैं उनको उतनी ही इज्जत देती हूँ.
0: बिल्कुल ऐसे,
1: क्योंकि ये जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, अब हम रैंडम बात कर लेते हैं, राहत है, मिसेस सईद है, दरक्षा है, कामिल है, क्या हो गया, तैमूर है, अच्छा मैं सबके नाम लेने लगूंगी, दुआ है, और हमारी वो दुआ ली है, जहरा है, कितने सारे हमारे लिसनर्स हैं. माजद मैं बहुत सबके नाम नहीं ले पा रही, मतलब ये मुझे डीएम करेंगे ना, मैं बहुत मोहब्बत से उनको रिस्पॉन्स करूंगी. लेकिन अगर आपने फलाने हवा में चलते हुए तीर से पकड़ा मेरा नंबर और आपने मुझे मैसेज किया, हाउ यू थिंक कि आप कितने भी अच्छे होंगे, ये हरकत अच्छी नहीं है. तो मैं इस चीज को शायद बहुत ज्यादा माइंड करूंगी. तो मुझे कुछ दिनों से लग रहा था, लेकिन कल तो लिटरली मुझे बड़ा ही बुरा लगा. खैर, आपने मुझे एक तस्वीर भेजी थी माजद से, बड़ी प्यारी सी, अपनी वाइफ की और बच्चों के साथ. वो मैंने बाद में देखी, नहीं फिक्र ना करें
0: जी.
1: वो मेरे तो हमने गाड़ी में भी उस पे गपने
0: लगाई नहीं.
1: ओह माय गॉड,
0: बहरहाल ये था वो सारा मामला.
1: मतलब ऐसी खूबसूरत जगहों पे आप घूम रहे हैं मेरे बगैर.
0: आप पहचाना आपने कि कौन था वो तस्वीर में?
1: हाँ, मैंने ऑफ कोर्स
0: पहचान लिया था.
1: ऑफ कोर्स, मतलब जिंदगी ऐसे भी.
0: हाँ, मतलब
1: गपने
0: लगाई नहीं.
1: ओह माय गॉड,
0: बहरहाल ये था वो सारा मामला.
1: मतलब ऐसी खूबसूरत जगहों पे आप घूम रहे हैं मेरे बगैर.
0: आप पहचाना आपने कि कौन था वो तस्वीर में?
1: हाँ,

0: जवाब आएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि देखें, अब आप भी नहीं चाहते ना कि आप मुझसे कोई अच्छी चीज सीख के।
1: कुछ मजा नहीं आ रहा रेबेका माइक्स का, दोनों एंड से आवाजें ठीक नहीं बन रही हैं।
0: क्या प्रॉब्लम?
1: कुछ
0: ये वाला माइक यूज करूं?
1: नहीं, अब आवाज ठीक है उसकी, हेडफोन्स में कुछ आई थिंक शायद यहां का
0: हेडफोन का। हां, मेरा वाला तो वो भी सही है।
1: अच्छा ठीक है, अब जी
0: कुछ
1: मजेदार सीन नहीं बन रहा था। हमारा चले, कोई बात नहीं। अच्छा, बात हो रही थी कि
0: देखें जी, बात हो रही थी कि प्राइवेसी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में हम ये समझते हैं, मैं अब अपनी बात नहीं करी, मैं अब हम जनरल ओवरव्यू पे आते हैं। आमतौर पर हम सब, इवन मेरे लिसनर्स जो हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे बहुत से ऐसे लिसनर्स हैं जो मेरे फेसबुक में मेरे साथ हैं, हम एड फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी वीडियोस लाइक भी करती हूं। मुझे आज से कुछ 4-5 साल पहले हमारे यहां पर एक ड्यूटी ऑफिसर होते थे, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने भी शायद वो किसी लिसनर के साथ ऐड हो गए, तो उन्होंने मुझे कहा, आप क्यों लाइक करती हैं लिसनर्स की पिक्चर्स या कोई चीज आ रही है? मैंने कहा, मतलब एड फ्रेंड्स है ना, वी आर फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा, आपने ना लाइक किया करे, इससे वो अजीब लगते हैं, आप आरजे हैं तो आपने लाइक नहीं करना। मैंने कहा, नो, इट्स टोटली मेरी डिक्शनरी में, मेरे एथिकल जो एक किताब है उसमें ये गलत बात है।
1: बिल्कुल,
0: मेरे सामने जिसकी तस्वीर आएगी वो मेरा फेसबुक फ्रेंड होगा, मैं उसकी तस्वीर वीडियो लाइक भी करूंगी, जहां मुझे कमेंट करने की जरूरत है मैं कमेंट भी करूंगी। मैं वो नहीं हो सकती जो छुप छुपा के देखती जा रही है और कमेंट्स नहीं कर रही, लाइक नहीं कर रही। अच्छा, बताने का मकसद ये है, देखिए आप ये चीज रखें, दूसरों को अप्रिशिएट करें। हम पूरी दुनिया में ये चीज देखते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है ना, क्योंकि वो आपके मुल्क की पहचान होता है, है ना, वो आपको रिप्रेजेंट करता है ना। माहिरा खान जब मुल्क से बाहर जाती है तो वो पाकिस्तानी सेलिब्रिटी माहिरा खान है। हमारे सईद जब जाएगा, फहद मुस्तफा, फवाद खान जब कहीं,
1: हाँ जी, साहिल खान, सारे मतलब जब जाएंगे बाहर।
0: पता नहीं ये कौन है, सॉरी,
1: ये अभी नया आर्टिस्ट है, आप उनको जानते नहीं है, कुछ दिनों में आप
0: उसके
1: साथ काम करने के लिए आप टीवी पे
0: तरसेंगे, और अगर उसे टोपी
1: वो नहीं उतारेगा,
0: अब टोपी शायद नहीं उतारेंगे
1: जी, मेरे बालों को नजर लग जाती है।
0: पहले किसकी लगी हुई है नजर?
1: मैं कुछ चीज उठा के मारूंगा जोर की। अच्छा,
0: आप आने मुझे धमका रहे हैं
1: जी, मैं आपको बकायदा धमका
0: रहा हूं। वायलेंस की बात कर रहे हैं आप, प्रोवोक कर रहे हैं
1: आप, मेरे
0: प्रोवोक कर रहे हैं आप। माय गॉड, कहां है मैनेजमेंट, 101 की मैनेजमेंट, प्लीज आर यू लिसनिंग?
1: तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि वो अभी मेरी 2 मूवीज आ रही हैं और मेरे 4-5 ड्रामे आ रहे हैं और एड्स में भी मैं काम कर रहा हूं काफी।
0: कौन सी वाली एड्स?
1: हां जी, मैं इश्तियाक साहब हो गया हूं, रेडियंट टीवी आर्टिस्ट।
0: आज हम देखे ना, लिसनर से थे वो कह देते थे आज हमने कुछ अच्छी बात ही नहीं हो पाई,
1: मेरे से बोलने नहीं हो रहा यार, आज कुछ मजा नहीं आ रहा, मुझे बोलने नहीं हो रहा कि शायद मैं थका हुआ हूँ।
0: अच्छा, वो
1: तो इसकी गाड़ी में आया हूँ मैं, मेरे हालात है।
0: आप उन लोगों में शुमार करते हैं जो सो के 8-10 घंटे सो के उठने के बाद,
1: नहीं नहीं
0: यार, क्या जिंदगी इतना,
1: नहीं नहीं, पता क्या, ये मेरे बेटे की आदत है, सुबह उठते ही पहला लफ्ज बोलता है, पापा मैं थक गया। हम बेड से धक्के मारते, उतरो नीचे, आप थक के देखे। लेकिन हाँ, लेकिन इतनी नींद शायद पूरी नहीं हो रही होती है मेरी। मैं रात को सोता सके 11:30 हो ही जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां तो बहुत तंग करते हैं, और तकरीबन फिर मुझे उठना होता है 3 बजे, उसके बाद मैं सोता हूँ तकरीबन 4:15 बजे, फिर 6 बजे की बैल होती है 6:15 की। तो जिंदगी ऐसी है, बैलों पे चल रही है,
0: नींद ना पूरी हो तो कितना मुश्किल होता है ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आपने बच्चों का जिक्र किया, तो मेरी भांजी है ना, उसने जो फीडर है ना वो मेरी अम्मी से ही पीना है।
1: अच्छा,
0: अगर अम्मी नहीं है तो मैं, और मैं अगर नहीं तो फिर अपनी मामा, उसकी असल जो हकदार है अपनी प्रॉपर्टी की, अदरवाइज कोई भी है उसको सिर्फ मेरी अम्मी चाहिए। और उसको हम हंसते हैं, उसको ये लगता है मेरी अम्मी उसकी अम्मी है और हम दोनों उसकी बहनें हैं। मैं बड़ी आपी, उसकी अपनी अम्मी, उसकी छोटी आपी, मतलब आपी। और रात में अगर वो कभी उठ जाए तो वो बड़ा अच्छा, मैं भी आपको ऑफ एयर वीडियो दिखाऊंगी, वो बाकायदा धक्के देती है मेरी अम्मी को। धक्के देना यानी पुश करना कि उठो उठो और अब मुझे तुम दूध दो। हम बनाएंगे दूध तो वो हमसे फीडर अपना ले लेती है, वो ड्राई मिल्क जो बच्चों का होता है वो ले लेती है, उसका टैंक, वो उसकी जो पानी की बॉटल है वो ले लेती है, कि भाई मुझे तुम लोग कौन हो, मेरी माँ तो ये है, ये मुझे मैं और मेरी बहन आराम से सोते हैं, वो हमारी अम्मी के पास सोती है, और हम कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा। मेरी अम्मी आज सुबह कहते, भाई देखो तुमने मुझे अगर आया रखा हुआ है मैं तुम लोगों की नौकरी से इस्तीफा देती हूँ। क्योंकि अगर ये रात में जाग जाए ना

0: बेटी तो वो फिर 2 घंटे जागती है।
1: हाँ बच्चे भी आपको पता है ऐसे करते हैं ना,
0: फिर वो सोती है, घर का ये काम करना है वो काम करवाना, तो ये खैर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतने आप लेजी है, एक गाना लगाए उसके बाद पानी पिए।
1: आप लोग गाना सुन सो के आते हैं भाई।
0: गाना सुनी लौट के आते हैं। श्री विदास, हियर वी गो।

0: Alright जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं 101 मुझे कहते हैं साहिल, और मेरे साथ मौजूद आप सबकी फेवरेट वन एंड ओनली
1: रेबेका अब्दुल
0: जी.
1: क्यों जलते वैसे साहिल, आज ऑनियर आप बता दें, मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम इज, आप क्यों जलते हैं, व्हाई यू बर्न? जेलस नहीं होते, बर्न होते हैं.
0: मैं जल जाता हूं.
1: वकास भाई, ये काम करें प्लीज, ये बंद कर दें, ठंड लग रही है.
0: यार नहीं यार, ये क्या, एसी बंद करवा देंगे तो किस तरह बैठेंगे हम यहां पे?
1: मैं बताती हूं, जरा एसी बंद करना, कैसे बैठेंगे मैं इनको बताती हूं.
0: ऐसे बैठेंगे. ए
1: 1 2 3 ऐसे बैठेंगे,
0: ऐसे बैठेंगे,
1: कोई देखे फर्क नहीं पड़ा ना.
0: हाँ जी,
1: ठंड लग रही थी
0: जी.
1: सर्दी लग रही
0: है. 9202540 इज द नंबर. हमारे टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो हमें आ रही हैं बहुत ज्यादा, और लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं.
1: अच्छा, लेकिन तो, इसके साथ साथ मैं एक और चीज भी जरूर ऐड करना चाहूंगी कि क्योंकि हम ड्राइव कर रहे होते हैं अक्सर, बेशतर हम कहते हैं ड्राइव केयरफुली, अपने साथ उन लोगों का ख्याल रखिएगा जो रोड पर मौजूद है. देखें, जिसे हम सिविक सेंस कहते हैं ना, वो बहुत जरूरी है. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो खुदारा ओवर स्पीड, मैंने मतलब लिटरली मैं इतने सालों से ड्राइव कर रही हूँ साहिल, आप खुद भी ड्राइव करते हैं, मैंने ओवर स्पीड करते हुए लोगों को देखा है. दिस फील सो प्राउड. मैं मतलब आज जब आ रही थी तो वो देख लेते ना, खातून है, आइडिया हो जाता ना. तीन बड़ी बस, एक हाईएस्ट, चार अलग, और अलग अलग टाइम पे, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे. मुझे ना इंडिकेटर दे रहे हैं कि अब हमें जाना है, कि अब हमें गुजरने दो. ना ओवर स्पीड लेन में मैं चल रही हूँ, ना मैं ओवर स्पीड कर रही हूँ, ना मैं स्लो लेन में चल रही हूँ, ना मेरी गाड़ी स्लो चल रही है,
0: और साइड पे गाड़ियां भी नहीं है.
1: लेकिन वो सिर्फ एक खातून चल रही है माजद के साथ, और उसको तंग करना, ये तंग करना है ना, गैर जरूरी. आप हॉर्न दे रहे हैं तो हॉर्न देना तो अब्यूज करना है. मतलब हमें ये अंडरस्टैंड करना है, और खुदारा अपने दिमाग से ये चीज निकालते कि ये काम औरत कर रही है तो ये इस वजह से ऐसा है, ये एक मर्द करेगा तो ये इस वजह से ऐसा है. आपने देखा हम बहुत ज्यादा उस फर्क में आ जाते हैं. मैं बोलूंगी ये साहिल कर रहा है तो ये इसलिए अच्छा हो गया, रिबेका करेगी तो बुरा, ये काम तो औरतें अच्छा करती हैं, ये वाला एक आम तासुर क्या लिया जाता है. घर में मर्द कुकिंग करते हैं ना तो कहते हैं अरे वाह आज तो कमाल हो गया, जैसे कोई स्पेशल चीज है. कुकिंग इज, आप मुझे बताए किसी भी दुनिया की किताब में लिखा है कि कुकिंग जेंडर बेस्ड है? पूरी दुनिया में बड़े बड़े शेफ कौन है?
0: मर्द.
1: सो इट मीन्स के जब मर्द कुकिंग करता है उसके हाथ में जायका है. लेकिन हमारे यहाँ तो ऑफकोर्स हम कहते हैं घरों में, अब वेस्ट में चले जाना या बाहर चले जाना. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. आई वाज इन चाइना, मैं जब शुरू में गई तो मैंने उस वक्त, आप उनके कल्चर से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मैं देखती थी कि वहाँ पर ना खवातीन का पर्स जो है वो मर्दों ने कैरी किया है. और ये मैं एक बात नहीं करी, ये बहुत आम बात है, बहुत ही आम बात है. बच्चा भी जो है वो मर्द ने उठाया हुआ है, और खवातीन जो है वो मर्दों के साथ चल रही हैं, और अगर शॉपर है कोई शॉपिंग है तो वो भी मर्दों ने उठाया, अगर बच्चा कार्ट में डाला हुआ तो बच्चा लेके जा रहे हैं मर्द, और औरतें उनके साथ बातें करती जा रही हैं, कपल्स फैमिली. मैंने उनको देखा वो बहुत मुस्कुराते हुए खुशी से जा रहे हैं. फिर मैं जब ऑफकोर्स मैं उस कल्चर में इंट्रोड्यूस हुई, दोस्त बने, तो पता चला वहां पर ये समझा जाता है कि कोई डिविजन नहीं है कि ये काम मर्द करेगा और ये काम औरत करेगी. जैसे हमारे वहां पर एक कॉलीग थे, तो बड़ा अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी. ऑफकोर्स हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो कभी होता है समोसा ले आओ, पकौड़े ले आओ, या घर में बन जाएंगे. वहां कहाँ पकौड़े बनाएगा, कौन समोसे बनाएगा. तो हमारे एक कॉलीग थे तो उन्होंने कहा, हम शूट करके वापस आए ऑफिस में, तो उन्होंने कहा रिबेका आज मजा आ जाए ना, आप हमें वापस जाए ना घर, यानी मेरे अपार्टमेंट, तो आप हमें पकौड़े बनाकर भेजें. तो हमारे जो चाइनीज कॉलीग थे जो उर्दू बोलते थे, उनका नाम है लियो साहब, तो लियो साहब कहते हैं कि क्यों वकार साहब, रिबेका साहब आपको पकौड़े क्यों बना के देंगे, आप क्यों नहीं बनाएंगे? तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए जो नॉर्मल, उन्होंने कहा सर जब बारिश होती है तो घर में खवातीन काम करती हैं, या वैसे भी खवातीन कुकिंग करती हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, उनका रिबेका साहिबा आप चाइनीज कल्चर को देखें, चाइनीज कल्चर में कोई मर्द और खातून काम के लिए जो है वो मुख्तस
0: नहीं है.
1: तो कहता मैं अपने घर में जाके काम भी करता हूँ, और हमारे घर की जब खवातीन है वो बैठती हैं, हम कुकिंग काम, मतलब मैं ऑफिस से जाके कुकिंग भी करता हूँ समटाइम. अच्छा, वहां पर एक और चीज भी, घर में कुकिंग करने का रिवाज बहुत कम है,
0: कम है,
1: क्योंकि वहां पर जो रेस्टोरेंट्स हैं, या मैं बात करूँ जो जितने भी दफातर होते हैं, जैसे हमारा जो ऑफिस था उसकी पूरी जो है वो एक कैंटीन थी जिसकी चार मंजिलें थी, और पांचवी मंजिल पे हमारी फॉरनर्स के लिए जो है वो चीजें थी जो आप खरीद सकते हैं. चार मंजिलें हैं, जो तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल है, सॉरी पांचवी पे तो हमारे वो था, क्या होता है जहाँ से चीजें आप खरीदते हैं, ग्रोसरी शॉप,
0: ग्रोसरी शॉप्स,
1: चार शॉप्स में ऊपर वाली जो सबसे टॉप ऊपर वाला फ्लोर था वो था हलाल फूड का. तो जितने भी जो ऑफ कोर्स जो हलाल फूड खाते हैं वो लोग उस कोर्ट में जाते थे, चाइनीज में जाके खाते थे, बाकी तीन फूड जो है वो चाइनीज लोगों का जो खाना बनता है वो वहां पर था. तो आप सोचिए कि इतनी ज्यादा डिटेलिंग है. सुबह नाश्ता है 2 रुपए में, 2 RMB में, जो 80 रुपए बनते हैं, 80 रुपीज नाश्ता हो रहा है. 1 रुपए का आपका लंच है, ठीक है. अब जो इट्स लाइक अ बुफे सिस्टम, आप 1 रुपए में 1 RMB में जो मर्जी खाएं, जो बन जाएंगे 40 रुपए. और 3 रुपए जो है वो डिनर के, जो 100-110-120 रुपए बन जाएंगे. कैन यू बिलीव दैट कि इतना ज्यादा लोगों को सुकून देने पर बिलीव है वहां पर. मर्द खवातीन आपको ना खुश मिलेंगे यहाँ पर गुजरते हुए चलते हुए हम एक दूसरे.
0: अच्छा, वहाँ पर आर के हिसाब से पे करते हैं या वीकली होता है, बाई वीकली होता है? अच्छा, किसना
1: वहाँ पर जो ड्यूटी आवर्स थे वो होते कैसे हैं? जैसे अगर मैं, अच्छा, 8:30 वहाँ पर ऑफिस लग जाते हैं, 8 बजे और 8:30 बजे. अब मैं सुबह उठती थी ना जब अपने बेडरूम से, तो बहुत खूबसूरत मैंने कल बताया खिड़की है, मैं जब खिड़की से कर्टन हटाती थी तो मैं वहाँ पर नीचे देखती थी सुबह 7 बजे 6:30 बजे सब लोग रवा दवा हैं सड़कों पर, जैसे हम कहते हैं चहल पहल. और बहुत अच्छा लगता था, ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ियां हैं, बच्चों को पिक कर रहे हैं, खुद लोग अपने काम की तरफ निकले हुए हैं. 8 बजे 8:30 बजे ऑफिस, ये 2 टाइम हैं खुल जाएंगे. चले कोई बहुत ऐसा भी ऑफिस हो सकता है 9 बजे. अब 9 बजे उनके मार्ट जाना चाहे उनके मार्ट खुले में, और मैं यहाँ पर देखती हूँ, आप अपनी लोकल मार्केट में देख लें, 11 बजे से 12 बजे से पहले मार्केट्स नहीं खुलती. आई एग्री विद यू, ठीक है. हम जहाँ पर रहते हैं लोकल एरिया है, वहाँ पर जिसमें एक छोटी सी वो टक शॉप है वो 11 बजे से पहले नहीं खुलता. और वहाँ पर 9 बजे आराम से, हाँ ठीक है, खाने पीने के कुछ रेस्टोरेंट्स और चीज़ें खुली, 9 बजे बंद हो जाते सब कुछ. मैं कैपिटल सिटी ऑफ चाइना की बात कर रही हूँ, बीजिंग की.
0: 9 बजे
1: बंद हो जाती है
0: रात को ना.
1: 8-8:30 बजे खुलना शुरू हुई शॉप्स, 9 बजे. ऐसा नहीं कि कोई टाइम है, उनको सारा दिन जो काम करना था वो मेहनत से कर लिया. 11-12 बजे तक भी शॉप्स कुछ खुली रहती हैं, लेकिन जिनकी जिन शॉप्स की जरूरत है. मुझे इतना अच्छा लगा. आप सोचें, ये साहिल, ये वर्किंग आवर्स है ना, एथिकली आपको इन्हीं वर्किंग आवर्स को पूरा करना. आप 12 बजे जाएंगे, अब रात 12 बजे तक मेला लगा हुआ, कौन उठ के 12 बजे? और नहीं है कहीं सिस्टम में हमारे, अब जब गवर्नमेंट कहती है 10 बजे बंद करना तो हम कहते हैं अरे ये तो बड़ा मसला. ये एक्चुअली सही है,
0: सही है.
1: और गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि सुबह 9 बजे उठकर सारे दुकानें खोलें. मैं अभी, अब मैं यहाँ से रेडियो करके जाऊंगी ना तो मैं देखूंगी अब शटर जो खुल रहा है शॉप्स का. एंड आई ऑलवेज फील व्हाई, क्यों सब्जी वाले बेचारे.
0: मेरी बात वही रहेगी, मैं आपसे पूछ रहा था कि पर आर के हिसाब से वहां पे किया जाता है या मंथली होता है?
1: अच्छा, ये डिपेंड करता है, हर काम पे डिपेंड करता है. जैसे मैं अगर काम करूं,
0: पर आर के हिसाब से वेज किया था, दिया थी.
1: पर आर के हिसाब से भी लोगों को जो है वो पे किया जाता है, और मंथली सैलरी पे भी है. जैसे हमारे यहाँ पर भी है, जैसे मैं, जैसे कुछ शूट्स मैं करती हूँ, सो कुछ होते हैं वो कहते हैं 2 घंटे का काम है, 3 घंटे का रिबैका, तो आप ये चार्ज करें. मैंने कहा ठीक है. और कुछ होता है कि पर प्रोजेक्ट आप चार्ज करते हैं. इसी तरीके से वहां पर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो आवर्स के हिसाब से काम करते हैं. जो वहाँ पर स्पेशली उसको क्या कहते हैं, पर डे भी होता है ना, जो वहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट होते हैं या एक्स्ट्राज होते हैं, वो बड़ा अच्छा पे करता है. मैं बताती हूँ, हम लोग एक शूट पर थे, सो वहाँ पर वो एक्स्ट्राज में कोई नौजवान था, फॉरनर था, तो वो चला गया अपने पैसे लिए बगैर. भाई उस सेट पे साहिल रोला मच गया
0: कि पैसे नहीं लेके गया,
1: कि वो लड़का कहाँ गया. हमें लगा कोई गड़बड़ हो गई है वो, तो फिर हमारे ट्रांसलेटर ने हमें बताया कि वो लड़का आया था वो एक्स्ट्राज में, ऑडियंस में बस खड़ा रहा जैसे रश करनी होती है, लेकिन उसके पैसे थे वो लेके नहीं गया. मैंने कहा है इसमें क्या बड़ी बात है, आप खुश होना चाहिए कि चले पैसे बच गए,
0: शुक्र करो अगले पूछ भी रहे हमारे तो.
1: अरे जिन्होंने काम किया था वो पूछते अल्लाह का वास्ता पैसे दे दें. भाई उसको अगले दिन ढूंढा, उसको पैसे दिए 500 RMB. 500 RMB कितने होते हैं मैं आपको बताऊँ ना, पाकिस्तानी मेरा 20-25 हज़ार बनता है. And I felt so good.
0: अच्छा, वहाँ पर आर क्या पे किया जाता है? Minimum.
1: Idea नहीं है मुझे, लेकिन salaries, मैं अब आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ. अब आप पूछो,
0: खुल के नहीं बता रही है, मैं पता है, हम खुल के नहीं बता रही कि चाइना में
1: 37,800 बनता है, 35 से 36,000 रुपया जो उस लड़के ने देना था. अब आप पूछ रहे हैं पर डे के, अच्छा मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो देखिए अपना जो काम करी थी ना, मेरी सैलरी है, मुझे पता है जी मैंने मंथ में इतनी वीडियोस बनानी है, मैंने इतना प्रोजेक्ट करना है, और अगर मैं बीजिंग शहर से बाहर जाके शूट्स और वीडियोस करूँगी तो जहाँ पर हम कहते हैं ना TADS, वो मुझे ट्रैवल, तो ऑफ कोर्स वो मेरी कंपनी पे कर रही है, मेरा स्टे कंपनी पे कर रही है, मेरा खाना कंपनी पे कर रही है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने शहर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम किया है तो मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे. यू गेटिंग माई पॉइंट? कि इस तरह से वो किसी को भी ऑन करते हैं कि जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत का मतलब लिटरली वो कहते हैं ना पसीना खुश्क होने से पहले वो पैसे देते हैं. पच्चीस से सत्ताईस दो तारीखों को पैसे सैलरी आती थी, 25 और 27 को. और अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 वीडियोज़ बनानी है और जो सारी चीज़ें हैं, मैंने 11वीं वीडियो बना ली, वो मेरी टीम को पता है मुझे ना लिखने की ज़रूरत है ना याद करने की ज़रूरत है. वो एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा नहीं, मेरी सब जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया उसके पैसे मेरी सैलरी के साथ आते थे. तो मैं एक्चुअली इसलिए बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि हमने भी ये सीखना, और मैं सीख के आई हूँ. अगर मेरे अल्लाह ने मुझे कभी भी इस मुकाम पर पहुँचाया कि मेरे वसीले से किसी का रिस्क लगे या मैं कोई काम कर सकी और किसी को ऑफकोर्स अपने साथ टीम का हिस्सा बना सकी, तो मैं उसको ईमानदारी से वो पैसे, क्योंकि मैं सीख के आई हूँ, मेरे साथ ईमानदारी हुई है. और वो अक्सर लोग कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है ना उस पर तर्स खाए, उसको वो मिला है.
0: जिसको कब शुरू कर रहे हैं हम अपनी प्रोडक्शन कंपनी?
1: अब दुआ करें ना साहिब, पैसे नहीं है अभी, हालात टाइट चल रहे.
0: इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी बैठ के, आखिर देखो क्या निकली बीच से. मतलब ये वाले मामला बड़े वो हैं. बहरहाल जी, न्यूज ब्रेक का टाइम होने वाला है
1: और मोहतरम
0: जनाब
1: जी, मुझे ऐसे लग रहा था आप आगे कॉल के सो रहे थे.
0: मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है. बहरहाल पता है मौसम खुशगवार होने से ना आपको और नींद आना शुरू हो जाती है.
1: मेरा भनोई भी पता लेके आया है वो क्या उसको कहते हैं, हलवा पूरी. चल बे चल बे, मैंने पता किसको कहा, अपने छोटे भाई को. छोटा ना तो मुझसे बड़ा है. तेरी दाढ़ी देख के तो लगता तू बहुत ही बड़ा है सुविधा.
0: अच्छा जी, हम आपको लेके चलेंगे न्यूज ब्रेक की जाने. प्रणय अपने हमारे साथ साथ आप सुन रहे हैं, इसके बाद लौट के वापस आएंगे और आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सो हियर वी गो.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथिर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का बुजदिलाना हमला नाकाम बनाते हुए 4 खवारिज को हलाक कर दिया है। मशहूर टेलीविजन और फिल्मी अदाकार मलिक अनोखा की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। एनडीएमए ने मॉनसून की जारी बारिशों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब के खतरे से खबरदार किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, built on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
4: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
5: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
0: Tune in to the one above, 101 FM.
6: Aap shuniye FM 101, available jabar.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीर खजाना ने कहा है कि डिजिटल मईशत के फरोग के लिए जामे इस्लाहात पर अमल दरामद किया जा रहा है। तरोबा में पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे रोज वेस्टइंडीज अपनी पहली इनिंग्स कल के स्कोर 194 रन 3 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: Great socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

FM 101. A bale bale, a shower shower.

0: Freak Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: And now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया है। सदर और वजीर आजम ने जनूबी वजीरिस्तान में एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। फ्रांस और स्पेन में जंगलात में लगने वाली आग के बायस 3 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। तरोबा में पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज वेस्टइंडीज अपनी पहली इनिंग्स गुज़श्ता रोज के स्कोर 194 रन 3 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा। अब खबरें तफसील के साथ।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ने मालदीव के सदर और आवाम को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में जारी खुफिया इतलात पर मबनी ऑपरेशन अल अज़्म के दौरान पितनाल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अपनी नाकिस पॉलिसीज के बायस अफगान आवाम का मुस्तकबिल तारीख कर दिया है। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान दरियाओं में पानी का बहाव मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहा है। खबरें तफसील।
1: This is FM
2: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 2 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमरान नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ने मालदीव के सदर और अवाम को उनके यौम आजादी पर मुबारकबाद दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में जारी खुफिया इतलात पर मबनी ऑपरेशन अल असम के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने डेरा इस्माइल खान के कंबाइंड मिलिट्री हस्पताल का दौरा किया और मंजी खेल चेक पोस्ट वाकई में जख्मी होने वालों की अयादत की। तरोबा में पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज वेस्टइंडीज अपनी पहली इनिंग्स गुज़िश्ता रोज के स्कोर 194 रन 3 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: लो जी ना, फिर चलिए गाने वाले पासे। और एक सोहनी जी आवाज़ अजकल बड़ी है, करंट जी आवाज़ है, बड़ी अच्छी लगती है। मेरा भी दिल करता कि आवाज़ तुम सुनावा, मैं खुद भी इंजॉय करा, नाल तुम भी इंजॉय करावा। फिर सुनो जरा टप्पे माइए। सुन दे पे और आज भाई 18,000 जंग आ लियो।
1: सजन दा ना हो वन लग जिंदगी नो रंग
0: आए, लग जिंदगी नो रंग जांदे। सजन दा ना हो वन लग जिंदगी नो रंग जांदे। उठो ना जुम्मो ना जरा।

जी में भाई जी में, प्रोग्राम वाले भी जींदे रहे, लिसनर भी जींदे रहे, थोड़िया मोहब्बत नाल इस प्रोग्राम नू रंग लगे रहे। देख लो मैं बोल बोल के कोई नहीं थक्या, तुसी भी ना थको ना।

सोने दा किल माया लोकां दियां रोंदियां अखियां साडा रोंदा दिल माया बसा मुल्तान दियां जंग शहर को मुड़ गईयां याद आई सजणां दी अखी वंज वंज लुड़ पईयां।

4741 टू मैसेज आया मोहम्मद रफीक फ्रॉम फोर्टा फोर्टाबास। वाह भाई वाह रफीक भाई, इतने दूर तो मेरा प्रोग्राम सुन दे पे हो, फोर्टाबास से मेरा प्रोग्राम जा रहा या फिर नेट से बह के सुन रहे हो या लाहौर दे विच हो, बहरहाल वेलकम, खुश आमदीद। बड़ा अच्छा लगा रफीक भाई तुसी प्रोग्राम दे विच शामिल होए, तुसें गीत दी फरमाइश की है, जिहड़ा गीत है ये है उर्दू और मैं चूंकि पंजाबी शो करदा तो पंजाबी सोंग मैं चला सकदा, लिहाजा मैं तुहानू डेडिकेट कर देना एक पंजाबी सोंग। नैक्सट जिहड़ा सोंग होएगा वो तुहाडे नामे लावांगा तो फिर दसना कि कैसा लगा। 4741 ते तुसी आके दसो। अज का टॉपिक जिहड़ा ये तो बिल्कुल एक नेकी भी है, सदका जारिया भी है और सवाब कमावण का तरीका भी है कि सानू बरसाती मौसम दे विच किहड़ियां किहड़ियां हिफाजती तदाबीर हैं जिहड़ियां अपनाउणियां चाहीदियां, एहतियातां जिहड़ियां करनियां चाहीदियां ताकि असी किसी परेशानी दुख मुसीबत तो बचिए। जनाब एक दोस्त ने तस्वीर सेंड की और उन्हें कहा कि जी है ना कूलर वाली टूटी, ये कूलर वाली टूटी रात को बंद कर दो, उन्हें छपकली की तस्वीर नाल ला के सेंड की और असल वो दसना यह चाहते हैं भी छपकली जी उन्हें उतू पानी पीता, अगर असी कूलर न वो पानी इस्तेमाल करांगे तो वह जहर जिहड़ा है वह पानी दे विच आएगा तो साडा मेदा स्टोमिक जिहड़ा उहदा प्रॉब्लम करेगा या सवीर किस्म की परेशानी जिहड़ी है सानू बन सकती। बिल्कुल तुसां ठीक आख्या, मैं इहदे नाल एक गल दा इजाफा करांगा कि जिहड़े बर्तन हैं मेरियां जिहड़ियां मावां भैणां हैं या घर दे विच जिहड़े बंदे काम करदे ने उन्हां लई एक खसूसी रिक्वेस्ट है पैगाम है कि हमेशा बर्तन उल्टा रखना, बेशक वो देगची क्यों नहीं है, वो बेशक परात क्यों नहीं है, वह गिलास क्यों नहीं है, कप क्यों नहीं है, चम्मच क्यों नहीं है, जिहड़े भी चीज़ ने उन्हां नू उल्टा रखना और जदों दोबारा चाहना तो उन्हें धोना जरूर है, यह सुस्ती नहीं करनी और हमेशा उन्होंने उल्टा रखा करो, सीधा ना रखा करो, ये कई चांस होंगे ने कोई बीमारियां कोई कीड़े मकौड़े कुछ भी आ सकते हैं। वैसे तो सुनना तो है ना कि उन्होंने चैक करना है, उन्होंने देखना है और वे देखभाल के पीना खाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने असी उन्होंने उल्टा रखिए तो अच्छा होंगे। और गंदम के जोड़े दाने हैं जो बड़ोलियां असी रखते हैं वो तकरीबन साल पै रहा हैं, शहरों के रिवाज ना हो, कम कम घर रिवाज होना, लेकिन देहाती इलाके जोड़े ने 100% जोड़े ने वह गंदम रखते हैं अपने बड़ोलियां दे विच, मिट्टी के बड़ोले भी हो सकते हैं, वह सीमेंट के भी हो सकते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं, तो उन्होंने बड़ोलियां दे विच भी इन्हां दे मौसम दे विच नमी आ जाती, नमी तो बाद कीड़ी लगती है, अगर असी उन्हां नूं हवा ना लवाईए तो फिर वह गड़बड़ करते हैं और प्रॉब्लम हो जाता है। एक गल मैं होर करा, बेशक तुसी ना करो लेकिन मैं करता जावां क्योंकि मैं ये लगता है कि मैं पूरे का पूरा प्रोग्राम जो नेकियां कट्ठियां कर रहा, जिहड़े असी सुबह कपड़े पहने बेशक वह क्यों नहीं लटकाए हो, बेशक क्यों नहीं हैंगर किए हुए, उन्होंने असी एक दफा छंड के पाना है क्योंकि इन मौसमों के कीड़े मकौड़े अनएक्सपैक्टड जगह पर पहुँचे होंगे ने, तो यह ना वे कि साढ़े जिसम से फिर एलर्जी या बीमारी या फिर दाने और इस तरह की चीज़ें पाव लग जा, जे कपड़े हैं उन्होंने हमेशा छंड के पाना, उन्होंने पूरा झंझोड़ लेना कि अगर कोई कीड़ा मकौड़ा वो है तो वह गिर जाए थले डिग जाए, यह ना हो कि वह फिर साढ़े जिसम को कोई प्रॉब्लम करे किसी तरह की सूँ कोई टेंशन दे। और जनाब फोटाबास वाले तुहाडे नावें ये सोहना जिहा गीत

लो जी रजा भाई लिखते हैं सर टॉपिक पे, आज मैं ये कहता हूँ, आपको पता है कि हर तरफ मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू है, सबसे पहले हमें चाहिए कि जो हमारे जानवर हैं, मवेशी हैं, उनके लिए कोई खुश्क जगह का इंतखाब करें। वेरी गुड जनाब, इस पास से मेरी तवज्जो ना आ गई, तुझे सोनी गाल कर देती है। दूसरा, हमें चाहिए कि बच्चों को कभी भी बाहर ना भेजें, फिर जब बारिश पड़ती है तो इतना पानी हो जाता है कि जो फसलों को देने वाला जो नाला होता है और सड़क का पानी हो जाता है, जिनकी वजह से बच्चों को पता ही नहीं चलता, बच्चे पानी में गिर जाते हैं। रजा भाई बहुत अच्छा मैसेज।

लो जी, रजा भाई ने एक और मैसेज लिखा कि जो सब अहम है वो चीज़ ये कि हम सब पे फ़र्ज़ है कि जिन जिन इलाकों में अल्लाह ना करे बारिशों की वजह से सैलाब आ जाए, उन लाखों दिलों के उन लोगों की दिल खोल के हमें मदद करनी चाहिए। उनके मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम करें, उन्हें अपने घर में रहने की जगह दें, कोशिश करें कि बग़ैर तस्दीक करके किसी दूसरे इलाके दूसरे शहर में मत जाएं कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, सैलाब का वो ज़्यादा ख़तरा है। तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो मछली का शिकार करते हैं या दरिया में कश्ती रानी का काम करते हैं, नज़ारा लेने जाते हैं, बराए मेहरबानी इन चीज़ों से थोड़ा एहतियात करें। हाँ, जिहड़े बंदे सैरां ते टुर जांदे ना इस मौसम दे विच, उन्हां नूं नहीं जाना चाहिए।

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ने मालदीव के सदर और अवाम को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम की बहाली में अहम पेशरफ्त की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में जारी खुफिया इत्तला'आत पर मबनी ऑपरेशन अल असम के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आज़ादी पसंद अफराद के खिलाफ जारी मुहिम के नाम पर श्रीनगर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयाँ की हैं।
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan.
1: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया और इस बुनियाद पे किया कि जो वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहा था उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं और जो पेमेंट्स की जा रही थी उस मवाद के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको वायरल करने के लिए पाकिस्तान में, वो जो पेमेंट गेटवे के थ्रू आ रही थी, तहकीक ने यह बताया कि वो इंडिया से पेमेंट्स की जा रही हैं। अब ये शख्स जब गिरफ्तार हुआ और इससे तहकीकात की गई और तमाम तर मालूमात तक रसाई हासिल की गई तो पता ये लगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बॉट फार्म्स के जरिए। और ये जो बॉट फार्म्स हैं इनके जरिए एंटी स्टेट कंटेंट पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, वो कंटेंट वहां से उसको वायरल किया जा रहा था। अब इस शख्स ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आजाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से था। हम तो डे वन से ये कह रहे थे कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ये कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये कश्मीर के पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है उसको कमजोर करना चाहती है और ये एक साजिश है जिसके तहत ये तमाम मामलात हो रहे हैं और इनका कश्मीर कॉज के साथ, कश्मीर की आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और हम ये सवाल उठाते थे कि ये अगर इतने मुखलिस हैं कश्मीर के साथ और कश्मीर कॉज के साथ तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, ये इंतखाबी अमल का हिस्सा क्यों नहीं बनते और ये अवाम के हकूक के लिए बात क्यों नहीं करते, क्योंकि इन्होंने जितने भी अपने मामलात किए वो मुहाजरीन की सीटों का मामला हो, वो पुरतशद्दद एहतजाज हो जिसके तहत इन्होंने कश्मीरी पुलिस के जवानों को शहीद किया और कश्मीर के अंदर तशद्दद की सियासत की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की और उसके साथ साथ इन्होंने जत्थाबंदी और सड़कें बंद करके कानून को अपने हाथ में लिया, तो मैं ये समझता हूं कि ये इनके हाथ शुरू से साजिश में रंगे हुए थे और जो मजमूम साजिश जिसका ये हिस्सा है और जिसको ये आगे लेके चल रहे थे, आज कोई शक को शुबा नहीं होना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी को कि इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं और हमारे पास अब इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। और जिस तरीके से इन्होंने असले से डंडों से लैस एक तहरीक शुरू करने की कोशिश की वो ना कश्मीरी अवाम के मफाद में थी और ना उसका कश्मीर कॉज से कोई ताल्लुक था। और ये साजिशी अनासिर चाहते थे कि कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे कश्मीर को, कश्मीरियों को भी नुकसान हो और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के रिश्ते पर भी जोफ आए। तो ये वो लोग हैं जिनको मैं कहता हूं कि आज देखो, आज पाकिस्तान की कश्मीर की सियासी जमातें जो बड़े बड़े इज्तमात कर रही हैं, जलसे कर रही हैं कश्मीर के अंदर, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, मुजफ्फराबाद का जलसा आपने देखा, मीरपुर का देखा, बिलावल साहब कई जगह के ऊपर गए, तो ये जो अवाम का जम्मे गफीर है जो आपको पूरे कश्मीर के अंदर नजर आता है, इन्होंने आपकी साजिशी सियासत को रद्द किया है, आपकी तशद्दुद पर मबनी सियासत को मानने से इनकार किया है और उन्होंने हजारों की तादाद में बाहर निकलकर यह सबूत दिया है कि कश्मीर और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ना ये कमजोर हो सकता है ना ये टूट सकता है। और हम पहले कहते थे कि आप फंडिंग ले रहे हैं, आपको भारत फंड करता है, अब तो सबूत आ गए हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग के जरिए जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई है, भारत का क्या इंटरेस्ट है कश्मीर के अंदर, वो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर इस तरह के मामलात हों और कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। और आप देखेंगे कि जॉइंट एक्शन कमेटी का जितना सोशल मीडिया का मवाद था
उसकी सारी पेमेंट जो है वो इंडिया से आ रही थी और ये टेक्निकली डेटा से साबित हुआ है। तो ये साजिशी अनासर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हैं, आज ये पूरी कौम को जवाब दे हैं कि ये दुश्मन से फंडिंग लेके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी क्यादत के खिलाफ जो एक नफरत पर मबनी डिस इंफॉर्मेशन की कैंपेन चला रहे थे, उसमें इनकी और इनका और मुल्क दुश्मन अनासिर का जो गठजोड़ था और जो भारत से ये फंडिंग ले रहे थे, आज तो ये रोजे रोशन की तरह आया हो चुका है। और ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी आज ये किस मुंह से बात करेंगे किसी भी कश्मीरी के लिए कि जब इनके सारे ताने बाने जो हैं वो भारत से मिलते हैं। तो मैं ये एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें तमाम तर शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं और जो एक शख्स गिरफ्तार हुआ जो ये डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया पे ये खबरें फैलाने का माहिर है और मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी कंटेंट को वायरल करने के लिए। तो इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलती है। ये परसेप्शन की जो डोमेन है इसके अंदर जमीनी हकायक ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ होती हैं, मगर नौजवान नस्ल की, पाकिस्तान के लोगों की जहन साजी की जाती है इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला के, ये ट्रोल फार्म्स के जरिए और इस तरह की फंडिंग के जरिए, और झूठ फैलाया जाता है। और पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक में और जो डिप्लोमेसी में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क्यादत में जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने जो सफारती महाज पर कामयाबियां हासिल की हैं, जंग में जो कामयाबी हासिल की है उस पर हर पाकिस्तानी को, वो पाकिस्तान में रहता हो वो बैरून मुल्क रहता हो, उसको फख्र है। और ये बात हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही, इसलिए ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी जैसे मामलात किए जाते हैं और इनकी बैरूनी फंडिंग होती है और पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कोई कमजोर नहीं कर सकता अल्लाह ताला के फजल से। ये मुमलिकत खुदादाद हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होगी और मजीद तरक्कियां इसका मुकद्दर बनेंगी और पाकिस्तानी कौम अपनी हुकूमत, फौज और जिस तरीके से सफारती महाज पे जो कामयाबी मिली पूरी पाकिस्तानी कौम ने उसको सेलिब्रेट किया, मार्का हक के वक्त पूरी कौम मुत्तहिद थी। तो ये नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा जिसमें भारत मुलव्विस है ये चल नहीं सकता और इसको बेनकाब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे वो इसको बेनकाब करते रहेंगे। जरा वीडियो चलाइएगा प्लीज। ये आप देख सकते हैं जो जेरे हिरासत शख्स है भारतीय ऑपरेटर के साथ उसका व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुका है और जो व्यूज हैं उस हवाले से बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है कि जी इतने व्यूज हासिल करने हैं, इतने पैसे दिए जाएंगे, अकाउंट डिटेल्स दी जा रही हैं और ये थोड़े थोड़े करके पैसे ट्रांसफर किए गए ताकि जो एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसके सिस्टम में ये डिटेक्ट ना हो। बहुत बड़ी रकम यकमुश ट्रांसफर नहीं की गई, थोड़ी थोड़ी करके इसको ट्रांसफर किया गया। और ये तमाम तरीके आप देखें कि ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मवाद लगाया गया, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मवाद लगाया गया और इसको प्रमोट किया गया। तो हम तो देखते हैं कि जी ये जो पोस्ट की जा रही है पाकिस्तानी मुसलमान है, मगर पीछे इसके जो ट्रोल फार्म्स हैं, जो अकाउंट्स हैं वो भारत की फंडिंग पे ऑपरेट हो रहे होते हैं और इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ली जाती हैं। और इस पर भी तहकीकात हो रही हैं कि जो ये जो डिजिटल पेमेंट्स का गेटवे है, जो स्ट्राइक पेमेंट्स हैं, इस पर भी पूरी नज़र है पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तानी इदारों की, और इसको बेनकाब किया जाएगा। और सेक्टेरियन वायलेंस, एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा एक अपनी जगह, फिरका वारियत को फरोग देने के लिए पोस्टें लगाई गई, फौज के खिलाफ मुतद्दद पोस्टें आपको नजर आएंगी। तो ये जो एक साजिश है ज्वाइंट एक्शन कमेटी की और इन लोगों की कि वो फिरका वारियत भी फैलाएं, वो तशद्दद भी फैलाएं और जो पाकिस्तान में एक रिश्ता है फौज का और अवाम का ना टूटने वाला, उसको ये मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार करना चाहते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये अकाउंट्स हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी फॉलोइंग है, फिर उनकी फॉलोइंग बढ़ाई जाती है और इनके पीछे पूरे बॉट फार्म्स जो हैं वो ऑपरेट हो रहे होते हैं। और ये आप देखेंगे कनेक्टेड वाया इंडिया एंड्रॉयड ऐप, ये इसकी डिटेक्शन ऐसे हुई कि जब वीपीएन इस्तेमाल होता है तो वीपीएन जो है वो लोकेशन को मास्क कर देता है, मगर उस डिवाइस की लोकेशन जिससे वो वीपीएन इंस्टॉल हुआ है, जिससे ये पोस्ट हुई है, वो ये अकाउंट बेस्ड इन इंडिया, वो लोकेट हो जाती है
کہ جی اس ڈیوائس نے وی پی این لگایا تھا اور اس ڈیوائس کے ذریعے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں. تو یہ بے شمار اکاؤنٹ جو ہیں آپ کو انڈین بیس نظر آئیں گے. اور یہ دیکھیے نا, یہ فالوورز خریدنے کا, بڑھانے کا طریقہ, اس کی پرائسز, تو اس پر بھی پوری نظر ہے کہ ٹیکنیکلی اس کو کاؤنٹر کیا جائے. اور یہ آپ دیکھیں گے آگے چلتے ہوئے, یہ مزید پوسٹ ہیں جو فوج کے خلاف, ملک کے خلاف کی گئیں. یہ دیکھیے, یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے پوسٹ کی گئی ہیں. مزید پروپیگنڈا ہے جس میں لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ جی آپ بغاوت کر دیں, فوج کے خلاف, ملک کے خلاف جو یہ پوسٹیں ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور لوگوں کو تشدد پہ اکسایا جا رہا ہے. آپ کو یہ اکسایا جا رہا ہے کہ جی آپ بغاوت کر دیں, فوج کے خلاف, ملک کے خلاف جو یہ پوسٹیں ہیں آپ کے سامنے ہیں,

0: हो गई कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठजोड़ था इंडिया के साथ और वो कश्मीर के हालात खराब करना चाहते थे इंडिया से फंडिंग लेकर। ये देखिए, बेशुमार पोस्ट ऐसी हैं जिनके जरिए जहन साजी, मिस इंफॉर्मेशन का पूरा एक सिस्टम चलाया गया। और ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, इससे तहकीकात जारी हैं और बहुत सारा मवाद मजीद भी रिकवर किया जा चुका है और वो भी हम इंशाल्लाह ताला कौम के सामने रखेंगे। ये तमाम तर मवाद बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है। और ये देखिए, एआई के थ्रू जो इमेजेस जनरेट किए गए वो भी आप देख सकते हैं अपने सामने। और पुरानी वीडियोस को, किसी और मुल्क की वीडियोस को, किसी और इलाके की वीडियोस को कश्मीर की बनाकर पेश किया गया। और फिरका वारियत के हवाले से मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की गई, लोगों को तकसीम करने की कोशिश की गई। तो ये आज मैं चाहता था कि शवाहिद के साथ पूरी कौम के सामने हम इस साजिश को बेनकाब करें। और देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसको इंशाल्लाह ताला बखूबी करते रहेंगे टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ, जिस तरह ये साजिश बेनकाब हुई है। और इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे जो पाकिस्तान की परसेप्शन बिल्डिंग पूरी दुनिया में हुई है और पाकिस्तान को एक अच्छी डेस्टिनेशन के तौर पर, एक अच्छे मुल्क के तौर पर लोग परसीव कर रहे हैं, अमन के अलमबरदार के तौर पर परसीव कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क्यादत में, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान को जो इज्जत और वकार मिला है पूरी दुनिया में, इंशाल्लाह ताला इसकी हर कीमत पर हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान जो है वो मजीद तरक्की करेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू।
1: वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। उन्होंने कहा
2: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

Big radio, big style. Music. Please, FM 101.

0: Big radio, big style.
1: Please, wait.
0: FM 101.
2: God.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रास्तों में कहीं तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर इत्तला'आत ने कहा है कि पाकिस्तान के पास भारत और आज़ाद कश्मीर में कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के गठजोड़ को बेनकाब करने के लिए नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वजीर दाखिला ने आज तुर्बत में नए तामीर शुदा जदीद फ्रंटियर कोर हस्पताल का इफ्तिताह किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन अल अज़्म के तहत अब तक फितना अल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकाम ने श्रीनगर और दीगर अज़ला में सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी हैं।
1: This is FM.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या,

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

jazz music, and then there's magic. One Above FM 101.

jazz music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: This is FM 101.
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
3: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: This is FM 101.
4: This is it. Today's hottest music, 101.
5: I like it.

पाकिस्तान हमारी जान, सबसे पहले पाकिस्तान। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान।

हाय प्रीतम का कोई दोष नहीं है, वो तो मासूम सा है क्योंकि वो प्यार करता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो मुझे सुन रहे हैं और जहां भी हमें सुन रहे हैं, स्पेशली आप ड्राइव करते हुए हमें सुन रहे हैं, आउटिंग पे आप मौजूद हैं या के फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत ही एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। आजकल मौसम बहुत हसीन है, इसको एंजॉय कीजिए ना कि इसको खो दें आप। लेकिन हम आप लोगों के साथ साथ मौजूद है एफएम 101 के इस्लाम आबाद स्टूडियो से लाइव, और जो लोग रावलपिंडी इस्लाम आबाद के रहने वाले हैं उनको आइडिया है कि मौसम क्या कह रहा है। 10:04 17 मिनट आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक।

दुनिया दे तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा, कोई चोला मैं सीवा, दुनिया ते तू जीवे। जी ये वक्त की चाल मुझे बहुत पसंद है कि वक्त रुकता नहीं है, ऐसे भाग जाता है कि जैसे इसको भी कोई काम है, जैसे कि आपको काम है, आपको भी काम है नहीं आज।

0: इसे टॉपिक आपको बता देते हैं। टॉपिक है प्रोग्राम जस्ट सेक ऑफ एंजॉयमेंट कह सकते हैं। क्या आप अपने आप को खुश नसीब समझते हैं हमारी तरह? Do you consider yourself lucky?
1: पहली नजर में कैसा जादू कर दिया।
0: सारे सॉन्ग इसने छुपा के चलाए रात को।

थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शफ़ात अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम बेहतरीन। ओके थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का। मोहम्मद ज़ियाउल खान फ्रॉम अली, वेलकम टू द शो आरजे मोहम्मद यूसुफ द ग्रेट, शो इज़ गुड। और मैंने ये अच्छी बात आप में, ये अच्छी बात है कि आप शो के शुरू में नुसरत जी को प्ले करते हैं और कभी कभी पीर नसीरुद्दीन को भी। टॉपिक बड़ा मुश्किल रखा है जी आज का, उससे मुश्किल है जी, सुकून अच्छा वाला टॉपिक है। क्या आप अपने आप को खुश नसीब समझते हैं? मैंने तो कहा जी मैं समझता हूँ। जब आपके पास जीने की वजह हो आपकी जिंदगी में, बहुत मैं तो बेहतर तो नहीं कहता हूँ, मैं बेहतरीन कहता हूँ। अल्लाह ने आपको अच्छे लोग जो है अपनी लाइफ में दिए होते हैं,

जी कॉल्स भी आप लोगों की हम शामिल करेंगे। वैसे मैं माइक को देख रहा था, आस्ता आस्ता ये वाला बूम वाले माइक है ना, मगर मैं क्यों साथ साथ जो है माइक के साथ ऐसे झुकता चला जा रहा हूँ।

मतलब अपना खुद खाने के लिए घर से बाहर निकला और अच्छी बात है। रेडियो कौन से दूर है हमसे? तो टॉपिक है जी प्रोग्राम में, क्या आप अपने आप को खुशनसीब समझते हैं? और सच में ये जो मेरे इस वक्त कंडीशन है ना, पिछले 3-4 दिन से ऐसी रूटीन है कि सिर्फ काम की वजह से ऐसे नहीं है।

एक शॉर्ट टाइम से एक ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे आप लोगों के साथ। वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लिया आंखा।

वैसे जो आंखें हैं वो लगती हैं चोरी चोरी हैं, और इतना गौर से जब देखेंगे तो फिर मैं कुछ सोचा फिर की थी सी सही बोल रहे हैं आला प्यार पीछे हर कोई डाडा सोना खिल दे ओ प्यार पीछे हर कोई मिट्टियां बिछाड़दा। ओके जी, और वक्त हुआ चाहता है 10:30 और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। टॉपिक पे सिर्फ हम बात करेंगे, बाकी रिश्तेदारियां हम बाद में निभाएंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी से ठीक है, शुक्र अल्लाह का। किसी को सलाम देना है तो आप खुद जाके दीजिएगा, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप यहाँ से किसी को मैसेज कन्वे करेंगे। कुछ शराइत है शो के लिए, अच्छे से आजेगा, नहीं तो शरारती बच्चों के लिए हमारे पास सजा का माकूल इंतजाम मौजूद है। प्यार से बात करेंगे, अदब से बात करेंगे, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। Lines are open 0511111 and 9202540.

दस बजकर हुआ जाते हैं 42 मिनट और आपका मेरा साथ है इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी सुनना शुरू किया, उनको बताते चलते हैं टॉपिक है प्रोग्राम में कि क्या आप अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। डू यू कंसिडर योर सेल्फ लकी? जैसे इन केस यू फॉरगॉट, माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ।

0: वैसे किसी इंसान को अगर पता चल जाए कि कोई इसी के बगैर नहीं जी सकता है, फिर वो आपको बता देता है कि आओ। मज़ीद आप लोगों की पार्टिसिपेशन को शामिल करेंगे 0511111001 और साथ साथ आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस में शामिल कर रहा हूँ। हमें सुन रही हैं शाजिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। लिसनिंग यू फर्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम सर, यू आर एफएम शो वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।
1: मैं बस
0: माय प्लेजर।

देखिए जब इंसान ढूंढना चाहे ना तो सब कुछ मिल जाते हैं, और गूगल किया है FM 101 इस्लामाबाद और आपको सर्च कर लिया और सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। इंसान अगर ढूंढना चाहे तो उसे खुदा भी मिल जाता है, ये तो फिर FM 101 है। एक स्पेशली रीजनल जो लैंग्वेज है और हमारा ताल्लुक भी जो है वो इसी एरिया से है, तो अब मुझे किसी ने कहा था ये सॉन्ग आपने लाजमी चलाना है, ये मतलब सॉन्ग ये दूसरा चलाओ, इसरार का सॉन्ग है। हाय हाय, क्या लेके आया वैसे? बर्गर लेके आए हो? कबाब वाले? अंडे वाले? नहीं यार मैं नहीं खाता हूँ यार, आप खाएं। दो मंगवाए हैं, अभी मैं नहीं खा सकता, मैंने खाया ना तो मेरा गला खराब हो जाएगा, अभी नहीं। आप ठहरे कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले और हम हैं चाय पीने वाले, हम अपने गले का जो है ना इस गले का ख्याल करते हैं, हमारा कमाऊ गला है।

जो ना सॉन्ग सुन के ना मुझे वो जिशान मुझे वो याद आ जाते हैं जी, मैं रवा तो या ना रवा की सलाम। अच्छा आज की कॉल, मैं वैसे उनको भी मैंने एक दो बार पहले भी रिक्वेस्ट किया, आप जब आते हैं ना सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड और शो से रिलेटेड कॉल किया करें, बात किया करें। आप हाउस डैड के शो में पूरे पूरे गज़लें सुना रहे हैं, मैं वैसे आते हुए सुन रहा था। पता उससे सबसे एक जो मेन चीज़ है ना कि जो प्रेजेंटर है ना वो इरिटेट हो जाता है कि मतलब टॉपिक रिलेटेड ऐसी बात नहीं है। स्पोर्ट्स के शो में अगर आप इस तरह, तो फिर वो माशाल्लाह कहते हैं कि मैं एक रेडियो टीवी आर्टिस्ट भी हूँ।

वैसे ना काफी दिन से आते जाते जब मैं सफर में होता ना, और अब रात के 2 या 3 बजे जब आप अकेले जा रहे हो तो फिर क्या म्यूजिक एंजॉय करेंगे आप।

फिर मैं कहता हूँ बड़ा अच्छे जो है वो गाया जाता है, पता नहीं माइक पे आके ना मुझे लगता है ये जो हेडफोन्स पहने होते हैं ना आपको अपनी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, आवाज़ अच्छी लग रही, नहीं अच्छी लग रही, अंडे वाला बर्गर खा ही जा रहे हैं तो चंगी लग रही मेरी वो।

0: मेरी आवाज क्यूबी से मिलती है ना वैसे, है ये फीमेल सिंगर है लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत आवाज कुरुतलैन बलोच। सो कुछ कॉल्स जल्दी से शामिल करते हैं फिर हम जाएंगे न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। और ये माइक आज इसको पता नहीं क्या हो गया, ये भी मस्ती करने शुरू हो गया ना दुनिया में, अब हमारे साथ जो है ना लोग मस्तियां करने के लिए हैं। 0501111001 वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? ज़हरा शाह बात कर रही हूँ रावलपिंडी से, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हर जो वक्त है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को देखें। समटाइम इंसान जो है ना वो हर्ट हो जाता है चीज़ों से, कुछ हालात से, कुछ लोगों से और कुछ लोगों के रवैयों से इंसान हर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप इस चीज़ को सोचते हैं ना कि मेरे आसपास भी कितने सारे लोग हैं शायद कि मेरी टेंशन, मेरी मजबूरी, मेरे मामलात उनसे ज़्यादा टफ हैं, तो और कोशिश करें कि अपने आप को ना हमेशा लोगों से कम ही समझें। बहुत ज़्यादा जब अपने आप को आप सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर वहाँ से आपका जवाल जो है वो शुरू हो जाता है।
1: मुख्तसर टाइम भी आपके पास कम है, मौला अली का कॉल भी है ना कि अगर आप परेशानी या मुसीबत के पीछे अल्लाह ताला की रहमत है, और ये हमें समझने में मेरे ख्याल से कुछ टाइम लग जाता
0: है। ठीक है जी, नाइस। जी, परेशानियाँ बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमें एक टाइम चेक ब्रेक और न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ जो है वो जाना है, वापस आएंगे। आप लोगों के फेसबुक के कमेंट्स को शामिल करूँगा मैं, facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियल पेज है, पेज को आप लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट्स करेंगे, कॉमेंट्स को मैं शामिल करूँगा 11 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस के फौरन बाद। स्पेशली जो लोग अभी हमें सुनना शुरू किया, जिन लोगों ने, उनको बताते चलते हैं कि टॉपिक है प्रोग्राम में कि क्या आप अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, आप समझते हैं? तो आनू तो रखे है So stay with us.

0: Yes, Salam.
1: You feel me, baby?
2: Spread love.
1: Yes, Salam Alaikum.

0: KSU, welcome.
1: Salam alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Salam alaikum.
0: Thank you so much, boy. Shukriya. Niya biyenga da yaay phadak jayenge tum. Aare dhanu sari kariye free di love you. Facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियली पेज है जी. कमेंट्स शामिल किए देते हैं जिन लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं. शाहिद खान हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई.
2: स्प्रेड लव. सलाम अलैकुम. आई एम नॉट अलोन.
0: कहते हैं जी एक वक्त था कि मार्केट छुप कर गया था क्योंकि इसलिए कि जेब खाली थी. आज मेरे पास तकरीबन दुनिया की हर आसाइश मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह. और कार मोटरसाइकिल है, गाड़ी है और वाह जी वाह जी वाह. छा गया आप हैं. कहते हैं सबसे बढ़ के मोहब्बत है. मोहब्बत मिसेस सईद हमारे साथ मौजूद हैं. आप सबको भूलो भरा मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रीना हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम आरजे यूसुफ. वेलकम रीना फ्रॉम लाहौर. थैंक यू सो मच. मारिया कहती हैं जी खुश आमदीद. थैंक यू सो मच जी. बहुत शुक्रिया.

हाँ जी शामिल कर दें आपकी रिक्वेस्ट। अच्छा जी जिशान है जी, हमारे बड़े अच्छे ही मेंबर हैं टीम के, और अभी बर्गर लेके आए, लेकिन ये बर्गर पता खाने वाला ही था। आपको कुछ फील नहीं हुआ इसमें? अच्छा मन लकड़ अजम पत्थर अजम नहीं, मैं वो पड़ा हुआ अभी भी मैंने जैसे इसका बन खाया। ये स्पेशली जिशान की कोई रिक्वेस्ट है, और थैंक यू सो मच, आपकी फैमिली सुन रही है। अच्छा सो ये सॉन्ग जो स्पेशली जिशान के लिए है, और डेडिकेटेड कह रहे हैं कि सम बन कर दें उधर छापा ही आज।

ओके जी, 11 मशहूर चाहते हैं इस वक्त 16 मिनट आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में। ठीक रात के 12 बजे तक एक सॉन्ग भी है, वो भी साथ से शामिल करेंगे और आप लोग उनकी पार्टिसिपेशन शामिल करेंगे। 0551111001 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। उस्ताद ये भी उस्ताद हैं, क्यों जी आप इनको उस्ताद नहीं मानते? हम तो मानते हैं। अदाउल्लाह इसहाक खान खलवी साहब, लेजेंडरी वॉइस। और जो लोग शामिल होंगे लाइव उनको पता चल रहा है कि टॉपिक है कि क्या आप अपने आप को खुश नसीब समझते हैं।

0: तेरे नैना दे तीर गए दिल मेरा चीर, मैं फकीर हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम
1: अस्सलाम यूसुफ खान।
0: यूसुफ खान?
1: यूसुफ खान आपको बना दिया, हम शेरबानो बन गए।
0: नहीं जी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह तआला ने जरा कुछ बनाया वो ठीक
1: है। यूसुफ खान बन गया, फिल्म थी ना दो बदर मुनीर की, यूसुफ खान शेरबानो, तो मेरे को यूसुफ खान याद आ गया।
0: लेकिन मैं
1: टॉपिक है ना भाई, आपका टॉपिक से ना मैं बहुत खुश हूँ, और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, उसका जितना शुक्र करूँ कम है। उसने तालीम नहीं दी, शऊर दिया हमारे को, समझ दी और इतना कुछ दिया, तो उसका जितना शुक्र करूँ कम है।
0: अच्छा,
1: आपसे बात करवाई मेरे को,
0: मेरे से तो बात, मेरे से मुझसे तो बात कर नहीं रहे आप, तो अपनी शुरू हो गए आते साथ, जिस तरह आप जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और मैं कॉलर हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी।
0: नहीं नहीं, ये sorry, sorry, sorry. ये मुझे
1: आपसे माजरत चाहता हूं।
0: नहीं नहीं, माजरत नहीं, मुझे लगता है ना कुछ जो
1: भाई आप, मेरी आपसे बात पहले हुई थी, बड़ी अच्छी हुई थी।
0: नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ना कुछ लोगों को शायद, मैं मतलब आपको वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग लाइव आते हैं ना, कम से कम देखना चाहिए कि होस्ट जो कर रहे हैं ना, उसकी सुननी चाहिए पहले, ना कि कॉल करें और डज डज डज फायरिंग शुरू कर दें आप।
1: पर यार अनपढ़ होना जाहिल भी हूं क्या?
0: नहीं नहीं, अड्डे जाहिल की, नंबर तो पूरा, नंबर तो पूरा मिलाया आपने।
1: अनपढ़ जाहिल आदमी हूं।
0: ओहो, मैंने, ओ सर, मैं खुद माजरत करके मैंने आपसे बात की है कि मैं ये बात ओवरऑल कर रहा हूँ, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल कर रहा हूँ सबका।
1: नहीं नहीं, कोई नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह पाक बहुत करम है, अल्लाह पाक का इतना शुक्र है कि अगर मेरे साथ बंदा बैठता है ना तो अपनी कहानी सुनाना शुरू हो जाता है।
0: अच्छा,
1: इतना करम है अल्लाह पाक का।
0: कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप, तारुफ करवाए ना पहले सही तरह से।
1: मेरा ताल्लुक जो है ना कराची से, इस वक्त मैं लाहौर अनारकली से बात कर रहा हूँ।
0: ओए होए, लाहौर में अनारकली से? अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो आप इस हवाले से अपने आप को खुशनसीब समझते हैं?
1: अल्लाह पाक के करोड़ों एहसान है।
0: अच्छा,
1: होते होते बचपन में बच गए, ऐसे ऐसे शऊर दिए उसने अल्लाह पाक ने, पढ़ नहीं सके थे गुर्बत की वजह से, मगर उसने वो जानत दी है, उसके बड़े करम है अल्लाह पाक का।
0: गरीब इंसान, कुरान पाक की एक आयत है, उसका तर्जुमा है कि जो लोग मतलब कसमपोशी में रहते हैं या जिनके हालात तंग हैं, तो अल्लाह ताला भी फरमाता है ना कुरान पाक में, उसका तर्जुमा है कि जिन लोगों को हमने अता किया वो ये ना समझे कि हम उनसे खुश हैं, और जिन लोगों को अता नहीं किया या जिनकी आजमाइश है वो ये ना समझे कि हम उनसे ना खुश हैं। ये दोनों तरफ से आजमाइश है। क्या पता अल्लाह ताला ने कितना अच्छा लिखा हुआ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है,
1: बंदे से बहुत प्यार करता है।
0: बिल्कुल
1: इतने तक कहा है कि देखो सारी कायनात की जिम्मेदारी इंसान ने ली है, फिर ये तौबा करेगा इसको मैं माफ कर दूंगा।
0: मायूस नहीं होना जिंदगी में, बस मायूसी खुद बहुत बड़ी नाकामी है।
1: गुनाह है, कुफर है। अभी मैं वो काम करने वाला हूँ एनजीओ का, शायद आपको भी रजाकार बनाऊंगा, साल लगेगा एनजीओ तैयार करने को।
0: अल्लाह ख्याल
1: करे। और ये चला रहे प्रोग्राम वगैरह अपने तारुफ होगा, फिर उसके बाद बनेगा।
0: अल्लाह सबके लिए बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना जी, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और हुण मैनू पहले वांगू नींदरा नहीं आउंदी है। मतलब मैं ओवरऑल जो है वो बात कर रहा हूँ, सम टाइम जो है वो कॉलर्स, जहर सी बात है, एक तो आपको बड़ी खुशी सी होती है किसी से बात करने की कि आप खुद भी लाइव जाने लगे हैं। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया रेडियो पे, लेकिन जब रेडियो है ना स्पेशली, वो होता है टू वे कम्युनिकेशन, एक नहीं सिर्फ दोनों साइड से आपको बात सुननी होती है कि जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है, जो बंदा होस्ट है, उसने प्रोग्राम में टॉपिक क्या रखा है, हमें किस चीज़ पे बात करनी, हमें कितनी बात करनी, हमने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, अपना तारुफ करवाना है, अगले बंदे की भी बात सुननी है।

और मैसेज है कि आप पोइट्री जब करेंगे तो अपनी पसंद की सबसे अच्छी जो आपकी पोइट्री है ना, वो जरूर शामिल कीजिएगा। ये नींद ना आए सॉन्ग जो है वो, अब तो वैसे ही नींद आ जानी जितनी थकावट हुई हुई है। जूनी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच, और कोशिश करेंगे जी, प्रॉमिस नहीं करेंगे। मैं को रिसाओ जी, सुन दे पे तुसी, सुन दे या नहीं?

0: 0501 000 1 000 1 and 9202 540 टॉपिक्स रिलेटेड. अब हमारे पास टाइम कम है, नॉर्मली आपसे जनरली गपशप भी करेंगे 6 से 7 मिनट है मज़ीद आपकी, और इसके बाद हम स्पेशल सेगमेंट ओल्डी गोल्डी नंबर्स के साथ जो है आप लोगों के साथ शामिल होंगे. सर जी देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? ओके ठीक है. तो क्या जिंदगी में समझते हैं अपने आप को खुश नसीब?
1: दूसरी बात ये है कि मैं वो आगे आपकी बात सुन रहा था, मुझे आपकी बात से बहुत अच्छी लगी. तो आपने ये आयत पढ़ी है, दोबारा पढ़ेंगे जरा,
0: कि जिन लोगों को हमने अता किया वो ये ना समझें कि हम उनसे खुश हैं, और जिन लोगों पे तंगदस्ती है या जिनको अता नहीं किया वो ये ना समझे कि हम उनसे नाराज हैं. ये दोनों तरफ से आजमाइश है.
1: लेकिन जब अब नहीं है तब भी शुक्र अदा करता हूँ. तो मेरा यकीन है, मेरा ईमान कामिल है कि मुझे पूरी दुनिया के डॉक्टर भी जवाब दे दें, मुझे अल्लाह पाक करने इतना यकीन है, मेरा इतना
0: आए, जब वो कह देगा कुन, जब वो कुन कह देगा तो फिर दुनिया की हर चीज जो है वो आपके लिए झुक जाएगी. ठीक है भाई, बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे. सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम. सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. तो इसलिए कहते हैं कि मायूस जिंदगी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बहुत बहुत खूबसूरत जिंदगी है, और जिंदगी सिर्फ एक ही बार जीनी है. ये कोई फिल्म नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है कि आप फिर से आएंगे और फिर जिएंगे. जिंदगी आपको मिली है, उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करें.

ओके जी, वेलकम करेंगे आपको स्पेशली सेगमेंट ओल्डी गोल्डी नंबर्स के साथ, और मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ आप लोगों के साथ साथ। ठीक है, रात के 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। सब्र आने की देर होती है, फिर खास क्या खास क्या खाक, सब दिल से उतर जाते हैं।

क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी में हार रहे हैं या दूसरों को सब कुछ मिल गया है? आपकी किस्मत जो है वो सोई हुई है।

यहाँ तो हर कोई करता है हमारे तुम्हारी, क्या हो जो हशर में खुदा मेरा तरफदार निकले।

बजे 11 बजकर हुए साथ हैं 39 मिनट और कुछ मजीद साथ है आपके हमारे साथ में। कि जमीन पर जल ना सका आसमान से भी गया, जमीन पर चल ना सका आसमान से भी गया, काटे जो पर तो परिंदा उड़ान से भी गया। किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूं मैं, किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूं मैं, हदफ को छू ना सका कमान से भी गया।

उसे भुलाया तो भुलाने की इंतहा ही कर दी। उसे भुलाया उसे भुलाया तो भुलाने की इंतहा ही कर दी।

पर आई आग में कूदा तो क्या मिला मुझे, उसे बचा ना सका अपनी जान से भी गया। तबाह कर गई मुझे पक्के मकान की ख्वाहिश, तबाह कर गई मुझे पक्के मकान की ख्वाहिश, और मैं गांव के कच्चे मकान से भी गया। जमीन पर चल ना सका आसमान से भी गया, काटे जो पर तो परिंदा उड़ान से भी गया। अभी साथ चल, अभी साथ चल।

तो क्या खुदा इस झूठ की भी सजा देगा, जब हम कहते हैं कि हम ठीक हैं जबकि हम तकलीफ में होते हैं। इंसान भी कितना मजबूर है कि जब अपने ही दुखों से हारने लगता है तो जमाने के सामने ठीक हूं इसका निकाब ओढ़ लेता है। तो क्या खुदा इस खामोश दर्द और इस मासूम झूठ की भी सजा देगा?

पसंदीदा शख्स के साथ सुकून तो बहुत मिलता है, लेकिन वक्त बहुत थोड़ा सा मिलता है, और फिर इस थोड़े से वक्त का इंतजार हर पल रहता है। कैसे मालूम है, शायद मेरा दिल है निशाने पर, जुबान से कुछ नहीं कहता, नजर से वार करता है।

0: क्योंकि अब तो थोड़ा सा वक्त है जी प्रोग्राम में और अख्तितामी लम्हात है प्रोग्राम के, आप लोगों से हम अब इजाज़त भी साथ साथ में निकल ले ही लेते हैं कि
1: दुख सहना हमें किस्मत ते बस चल दाने।
0: एक तो वक्त की किल्लत होती है और मुझे लगता है कि ये 2 घंटे जिंदगी के बहुत जल्दी से गुजर जाते हैं। सिर्फ कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छी सी बात, अच्छी सी चीज
1: कर दाने।
0: आप लोगों से शेयर भी हो जाए, आप लोगों से बात भी हो जाए। एक जो सिलसिला है 2016 से लेके अब तक,
1: दिल हूँ
0: जब से लाइव आया तब से,
1: हासा हूँ जचदाने।
0: इट्स लॉन्ग जर्नी।

0: दुख से
1: मोहब्बत और पसंद जो है वो दो अलग अलग जज्बे होते हैं, जिनको फूल पसंद होते हैं वो तोड़ कर पास रख लेते हैं, लेकिन जिनको फूलों से मोहब्बत होती है वो तोड़ते नहीं हैं बल्कि उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें मुरझाने नहीं देते हैं, क्योंकि मोहब्बत और पसंद दो अलग अलग जज्बे हैं।

कि उनके आने का है इम्कान, खुदा खैर करे। हम पे इतना बड़ा एहसान, खुदा खैर करे। बेवफाई की यूं ही बात चली महफिल में, हो गए वो भी परेशान, खुदा खैर करे। जब से जाना है मेरा हाल सुना है तब से, वो सितमगर है पशीमान, खुदा खैर करे। बदगुमानी की फिजा छाई है हर सिमत यहां, सख्त मुश्किल में है इंसान, खुदा खैर करे। दश्ते उल्फत में कदम रख तो दिए हैं हमने, दश्ते उल्फत में कदम रख तो दिए हैं हमने, दिल की नगरी ना हो वीरान, खुदा खैर करे। कर दिए हमने सभी जख्म हवाले जिसके, कर दिए हमने सभी जख्म हवाले जिसके, है वो हर दर्द से अनजान, खुदा खैर करे। कौन के आने का है इम्कान, खुदा खैर करे। हम पे इतना बड़ा एहसान, खुदा खैर करे। ओके जी, आप लोगों से इजाज़त लेंगे इस दुआ, इस यकीन के साथ कि आने वाला हर पल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। जाने अनजाने में अगर कोई भी बात आपकी खराशी का सबब बनी हो तो माजरत चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा। इंसान है, इंसान होने के नाते गलती हो सकती है, लेकिन कतन ये मकसद नहीं होता है कि आप लोग हर्ट हों।

आई वन फुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी और जब भी मुलाकात होगी होपफुली एक नए अज़्म के साथ और भूले नहीं होंगे आप। Let's prove it. ये आपने साबित करके दिखाना है। You don't have a short memory. तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें, मुकद्दर है या तन्हाई ये ना मालूम था हमें। करके तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें, अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें। आ जाना, मिटा जाना इस तन्हाई को, कि फिर से दावत हम देते हैं।

ऐ मेरे कुन फाया कुन। ऐ मेरे कुन फाया कुन, तेरी हद से मैं कहां दूर निकल सकता हूं। ऐ मेरे कुन फाया कुन, तेरी हद से मैं कहां दूर निकल सकता हूं। तेरी मर्जी है मुझे तोड़ दे और फिर से बना, फिर मुझे खाक नशीन करके यूं ही जीना सिखा। मेरे अंदर जो खला है मेरे मौला भर दे, तूने जो खास तवज्जो से बनाया है ये दिल, इसको मिट्टी में मिला दे या तू पूरा कर दे। मेरे खालिक में तेरे कुन की तलब में जिंदा हर घड़ी एक कयामत से गुजर जाता हूँ। इतनी शिद्दत से मेरा पहलू सुलग उठता है, दर्द की हद से गुजर जाता हूँ, मर जाता हूँ। ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे कुन फयकून।

हालत हाल मैं क्या रो के सुनाऊं तुझको, हालत हाल मैं क्या रो के सुनाऊं तुझको, तू नजर आए तो पलकों पे बिठाऊं तुझको। खुद को इस होश में मदहोश बनाने के लिए आयते हुस्न पढ़ूं देखता जाऊं तुझको। तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको। कर लिया एक मोहब्बत पे गुजारा मैंने, चाहता था कि मैं पूरा भी तो आऊं तुझको। अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है, अब जरूरी है कि मैं वजद में लाऊं तुझको। और क्यों किसी और की आंखों का कसीदा लिखूं, क्यों किसी और की मिदहत से जलाऊं तुझको। ऐन मुमकिन है तेरे इश्क में जम हो जाऊं और फिर ध्यान की जन्नत में न लाऊं तुझको। उसने एक बार मुझे प्यार से बोला था, सईद मेरा दिल है कभी सीने से लगाऊं तुझको। हालत हाल मैं क्या रो के सुनाऊं तुझको, तू नजर आए तो पलकों पे बिठाऊं तुझको। खुद को इस होश में मदहोश बनाने के लिए आयते हुस्न पढ़ूं, आयते हुस्न पढ़ूं देखता जाऊं तुझको।

वसल ही वसल रहे हिजर का इम्कान ना हो। ए मेरे दोस्त, ये रिश्ता कभी कभी बेजान ना हो। एक कैदी की तमन्ना है नया शहर मिले, शहर ऐसा कि जहां पर कोई जिंदान ना हो। दिल को रास आई हैं ये मुश्किलें, मुश्किल से बहुत। अब मैं ये चाहता हूं जिंदगी आसान ना हो। और बात तुझसे तेरे अंदाज में ही कर रहा हूं, बात तुझसे तेरे अंदाज में ही कर रहा हो। मेरे लहजे की अकड़ सुन के तू हैरान ना हो। इस कदर तंग है मायूस निगाहें उसकी, मौत भी सामने आए तो परेशान ना हो। और किसके आगे ये मलाइक की जबीने खम है, किसके आगे ये मलाइक की जबीने खम है, जिसको सजदा ये हुआ है कहीं इंसान ना हो। वसल ही वसल रहे हिजर का इम्कान ना हो। है मेरे दोस्त, ये रिश्ता कभी बेजान ना हो।

ये जो रंजिशें हुआ करती हैं, ये जो ताल्लुकात में कड़वाहट हुआ करती है, अगर एक जाविये से देखा जाए तो बहुत कुछ सिखाने आती है शायद। हम इंसान जो जज्बे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो जज्बा जो हमारे सामने आता है और हम उससे नाआशना होते हैं। अक्सर कहा करता हूं कि ये मोहब्बत का जज्बा हमारी जात में कहीं मुंजमद हुआ करता है। ये वदियत है हर इंसान को और उसके अंदर पाया जाता है। कोई एक शख्स ऐसा हुआ करता है, कोई एक लम्हा ऐसा हुआ करता है, कोई चेहरा ऐसा हुआ करता है जो जिसकी तमाज़त इसको पिघलाने लग जाती है और हम इस जज्बे से आशना होने लग जाते हैं। लेकिन हैं तो इंसान ही, कड़वाहट भी आती है, रंजिश भी आती है, मुश्किलात भी आती हैं और हमारा जहन वो कोरा पन्ना, वो सफेद कागज जिस पर हमें लिखना है अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ लिखते चले जाना है, इस कोरे पन्ने को भरना है। वहां कभी हम जो मोहब्बत लिखते हैं उसके साथ वो रंजिशें भी लिखनी पड़ती हैं। वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। कैसी अजीब बात है कि अल्फाज से मुबर्रा हो जाया करते हैं हम इंसान और ये कैफियत नक्श हो जाया करती हैं हमारे जहन में, हमारे जहन के पिन्हा खाने लहजों से और उनकी कड़वाहट से भर जाते हैं। होता और भी बहुत कुछ है, लेकिन जिंदगी के अदवार और उसमें से एक दौर जब ऐसा ही सब कुछ ज्यादा नुमाया होकर हमारे सामने आता है और उसके साथ साथ हमारी उमंगें, हमारी ख्वाहिशात और हमारे जज्बात, ये मतभेड़ चलता रहता है इन जज्बात का, इन ख्वाहिशात का और उन रंजिशों का। और हम इंसान बस जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है और गामजन रहना है उस सफर पर, अपने वजूद के अंदर इन जज्बों को, उन रंजिशों को और उन लम्हों को लड़ने भी देते हैं और साथ लिए भी फिरते हैं और साथ साथ कुछ अनहोनी ख्वाहिशात

सुनो, हम अपनी सारी रंजिशें, सुनो हम अपनी सारी रंजिशें और रंजिशों की सारी कड़वाहट, सभी बीते हुए पल, सारी यादें, सारी बातें भूल जाते हैं। सुनो हम अपनी सारी रंजिशें और रंजिशों की सारी कड़वाहट, सभी बीते हुए पल, सारी यादें, सारी बातें भूल जाते हैं। चलो वापस पलटते हैं, पुराना अजनबी लहजा कहीं से ढूंढ लाते हैं। पुराना अजनबी लहजा कहीं से ढूंढ लाते हैं, नए अंदाज से बादे दिगर हम एक दूजे के लिए, अपने हंसी एहसास को, जज्बों को ख्वाहिश में बदलते हैं। जरा सी हिचकिचाहट बेकरारी साथ रखते हैं। मगर इस आस पर फिर से नए इम्कान की बुनियाद रखते हैं कि हम एहसास के रिश्ते की सारी कुर्बतें सब जज़रो मद, सारे हसी मौसम बहम मिलकर गुजारेंगे। मोहब्बत को मोहब्बत के सलीके से निभाएंगे। चलो वापस पलटते हैं, सफर माकूस करते हैं, मुकम्मल अजनबी बनकर, नए रंगों, नई खुशबू, नए एहसास में ढलकर, यकीन की मशलें लेकर दियारे आशनाई में उतरते हैं, सफर आगाज करते हैं।

एक साथ वसलो हिजर निभाने की खैर हो, आने की खैर हो, तेरे जाने की खैर हो। जिसमें तुम्हारा अक्स दमकता है सुबह शाम, उस आईने की आईना खाने की खैर हो। देख है जमी हमारी तरफ चश्मे रिज्क से, हम भूल उस आईने की आईना खाने की खैर हो। देख है जमी हमारी

तुमको बस अपनी फिक्र है इस कायनात में। मैं चाहता हूं सारे जमाने की खैर हो, जिसमें तुम्हारा अक्स दमकता है सुबह शाम, उस आईने की आईना खाने की खैर हो।

0: मुझे दिल की बज़्म सजी रही, कभी ये चिराग जला दिया, कभी वो चिराग जला दिया। इतनी हसीन शायरी है, अगर आपके हाथ की किताब ले तो जरूर पढ़िएगा, पूरी किताब ही बहुत हसीन है।
1: जी हाँ,
0: नाम है इसका मोहब्बत खुशगुमान।
1: ठीक है,
0: बहुत अच्छी शायरी की सुनने वालों के लिए बहुत दुआ, बहुत प्यार,
1: बहुत शुक्रिया। सलामत
0: रहें, आबाद रहें, और आप इसी तरह आते रहें, हम सुनते रहें इंशाल्लाह।
1: सलामत अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जनाब।
2: शाह जी, मैं आपकी खबर की बात कर रहा
1: हूँ। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है,
2: अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइए, खैर खबर?
1: अच्छा हूँ जनाब, अच्छा हूँ। बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर हो सकती है?
2: आप ठीक आ रही
1: है? जी जी, बोलिए बोलिए।
2: अच्छा प्रोग्राम हमेशा की तरह आपका, और लगता है हमेशा आपके दुआ करते हैं आपके।
1: बहुत शुक्रिया।
2: कुछ इशार है करे जब?
1: जी इरशाद इरशाद।
2: घर को इतना भी नहीं तारीख रखना चाहिए, वाह जरा सा रोशने ठीक रखना चाहिए।
1: बहुत अच्छा
2: है, उसी के भेद से हाजिर में वायद की नमूद, दूर को हर हाल में नजदीक रखना चाहिए।
1: बहुत अच्छा।
2: खुद बहुत आ जाएगा काबा जबी की सीध में, बस जरा अंदर का किबला ठीक रखना चाहिए।
1: बहुत अच्छा।
2: दर्पे आजार है संजीदगी का पेशावर, पास अपने चश्मे तदहीक रखना चाहिए।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: पर्दा हैरत में रहना उसका मनचा ही सही, पर उसे पर्दा जरा बारीक रखना चाहिए।
1: बहुत अच्छा,
2: बहुत शुक्रिया आपसे बात करके अच्छा लगा।
1: सलामत रहिए, सलामत रहिए।

शुक्र किया है इन पेड़ों ने, सब्र की आदत डाली है। शुक्र किया है इन पेड़ों ने, सब्र की आदत डाली है। इस मंजर को गौर से देखो, बारिश होने वाली है।

सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। अब कोने में ढेर लगा है, बाकी कमरा खाली है। बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। अपनी मर्जी से सब चीजें घूमती फिरती रहती हैं, अपनी मर्जी से सब चीजें घूमती फिरती रहती हैं। बेतरतीबी ने इस घर में इतनी जगह बना ली है। देर से कुफल पड़ा दरवाजा एक दीवार ही लगता था। देर से कुफल पड़ा दरवाजा एक दीवार ही लगता था। उस पर एक खुले दरवाजे की तस्वीर लगा ली है और हर हसरत पर एक घिरासी पड़ जाती थी सीने में। रफ्ता रफ्ता सबने मिलकर दिल सी शक्ल बना ली है। ऊपर सब कुछ जल जाएगा, कौन मदद को आएगा। जिस मंजिल पर आग लगी है सबसे नीचे वाली है। एक कमरा सायों से भरा है, एक कमरा आवाजों से। आंगन में कुछ ख्वाब पड़े हैं, वैसे ये घर खाली है। और पैरों को तो दस्त भी कम है, सर को दस्त नवर्दी भी। आदिल हमसे चादर जितनी फैल सकी फैला ली है। सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। अब कोने में ढेर लगा है, बाकी कमरा खाली है। हर हसरत पर एक गिरासी पड़ जाती थी सीने में। रफ्ता रफ्ता सबने मिलकर दिल सी शक्ल बना ली है। एक कमरा सायों से भरा है, एक कमरा आवाजों से। आंगन में कुछ ख्वाब पड़े हैं, वैसे ये घर खाली है। सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। अब कोने में ढेर लगा है, बाकी कमरा खाली है।

बड़ी पुरसकून थी ये जिंदगी, नया दर्द किसने जगा दिया। किसी बेनियाज निगाह ने मेरी वहशतों को बढ़ा दिया। मेरे कम सुखन का ये हुक्म था कि कलाम मुझसे मैं कम करूं। मेरे होंठ ऐसे सिदे कि फिर मेरी चुप ने उसको रुला दिया। मुझे अपने इश्क पे नाज था मगर उसके कौल का पास था। मेरे चारा साज भी रो पड़े, वो कमाल जब्त दिखा दिया। और उसे शेर सुनने का शौक था, मुझे अर्ज हाल का जौक था। इसी जौक और शौक में एक दिन उसे हाल दिल सुना दिया। वो निगाह कैसी निगाह थी, ये गुरेज कैसा गुरेज था। मुझे देखकर भी ना देखना, इस अदा ने राज सुना दिया। और किसी नाम से किसी याद से मेरे दिल की बज्म सजी रही। कभी ये चराग जला दिया, कभी वो चराग जला दिया। मेरे कम सुखन का ये हुक्म था कि कलाम उससे मैं कम करूं। मेरे होंठ ऐसे सिले कि फिर मेरी चुप ने उसको रुला दिया।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब एफ एम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन, जिसकी बराह रास्त नशरियात आपकी समाअतों की नज़र कर रहा हूँ। अपने पैगाम मुझ तक पहुँचाइएगा और अपना पैगाम भेजने के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने 101 यानी 101 लिखना है, एक स्पेस के बाद अपना पैगाम अपने नाम और जगह के नाम के साथ 4471 यानी 4471 पर भेजना है।

इसके साथ साथ facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान, वेब एड्रेस है fm101 पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक फैन पेज का, पेज को लाइक भी कर लीजिएगा। और वहाँ पर जो स्टेटस अपडेट हुआ था प्रोग्राम के आगाज़ में, आती रली सैयद और 101 इंटरनेशनल के नाम से, उस पर कमेंट कीजिएगा, प्रोग्राम में शामिल करूँगा।

कुछ पैगाम आज शामिल करता चलूँ। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन लाहौर से सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हैदर बलोच हैं और जैकबाबाद थल डिस्ट्रिक्ट से आप साथ दे रहे हैं। आपने एक शेर लिख भेजा है, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। फजल ख़ान हमारे साथ हैं, आपने सलाम लिख भेजा है। इसके अलावा शफकत अली ख़ान हमारे साथ हैं और आपने बहुत तवील मैसेज एक लिखा है, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। इलियास हमारे साथ हैं, इसके अलावा आकिब अब्बासी साथ देते हैं। सारिम सुबहान हमारे साथ हैं और माज अली हमें सुन रहे हैं। मुस्तजाब हुसैन हैं, हामिद चंद हमारे साथ, हामिद चांद और अरुज चौधरी सुनती हैं। हुमा ख़ान हमारे साथ हैं, फैसल अब्बास हैं और ताहिर अजीज़ हैं। आप तमाम की शिरकत का बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद आने वाले पैगामात को आने वाले वक्त में शामिल करूँगा।

0: ठीक है, टेलीफोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम था और कॉल नहीं थ्रू हो पाई, दोबारा कोशिश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: आतर भाई क्या हाल है?
0: बहुत अच्छा हूँ जनाब,
1: और मैं भी अल्लाह का शुक्र है, मैं तो खैरियत से हूँ। अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन, लाहौर से।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज माशाल्लाह आप खूब छाए हुए हैं, बस्ती में हैं। तो मेरी एक दो तजावीज थी, उसके बाद मैं कुछ कलाम शुरू करूंगा। एक तजवीज तो ये है भी अदबी प्रोग्राम में एक बुक से अफसाना भी शामिल किया करें इसमें।
0: अच्छा।
1: दूसरी है भी महीने में एक शो ऐसा हो जिसका टॉपिक हो आज का शायर, शायर का तारुफ हो जाए और फिर जो लोग आए या आप उनका कलाम पेश करें, एक ही शायर का ना, तो उसकी कुछ गिनती पर, उसके फन पर बात की जाए, उसके हालात बताए जाए। मेरा तजवीज है, फारवेयर को आपने देना है। तो पिछले दिनों लाहौर के दरवेश शायर थे सागर सिद्दीकी, उनकी बरसी थी, तो मैं चाहता हूँ उनका कलाम शामिल करूँ।
0: जी जरूर।
1: उनकी गजल। एक वादा है किसी का जो वफा होता नहीं,
0: वाह वाह,
1: वरना इन ताराओं भरी रातों में क्या होता नहीं। जी भी आता है उल्ट दे उनके चेहरे से निकाब, हौसला करते हैं लेकिन हौसला होता नहीं।
0: बहुत अच्छा।
1: शमा जिसकी आबरू पे जान दे दे झूम कर, वो पंजा जल तो जाता है फना होता नहीं। अब तो कुदरत से रहे हो रस्मे नजारा बंद है, अब तो उनका दूर पर भी सामना होता नहीं। हर शनावर को नहीं मिलता तलातुम से अखराज, हर सफीने का मुहाफिज नाखुदा होता नहीं।
0: बहुत अच्छा।
1: हर बकारी पा नहीं सकता मकामे खाजगी,
0: बहुत अच्छा।
1: हर कसो नास को तेरा गम अता होता नहीं।
0: वाह वाह वाह।
1: हाय ये बेगानगी अपनी नहीं मुझको खबर, हाय ये आलम के तू दिल से जुदा होता नहीं। और मक्का है, बरहा देखा है सागर रह गुजारे रिस में, कारवां के साथ अक्सर रहनुमा होता नहीं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: एक एक वादा है किसी का जब वफा होता नहीं, वादा इंसानों भरी रातों में क्या होता नहीं। तो हमें याद रखें,
0: सलामत रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया।

मुद्दत हुई शेरों के सिवा कुछ नहीं कहता, मुद्दत हुई शेरों के सिवा कुछ नहीं कहता, यानी मैं बजुज नाज़ो अदा कुछ नहीं कहता। करता है मोहब्बत तो पुरस्तिश की हदों तक, करता है मोहब्बत तो परस्तिश की हदों तक, बरहम हो तो गुस्से में वो क्या कुछ नहीं कहता। और दरवेश तबीयत मुझे विरसे में मिली है, दरवेश तबीयत मुझे विरसे में मिली है, मैं ठीक गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं कहता, मैं ठीक गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं कहता। और देता है कोई शोख बदन इज़्न जसारत, देता है कोई शोख बदन इज़्न जसारत, तू हाथ बढ़ा बंदे कबा कुछ नहीं कहता। और ऐ नेक मनश मेरी नहीं फिक्र कर अपनी, ऐ नेक मनश मेरी नहीं फिक्र कर अपनी, उजड़े हुए लोगों को खुदा कुछ नहीं कहता। और ये जो नजर आता है हर एक दाग सलामत, ये जो नजर आता है हर एक दाग सलामत, यूं है कि पुराने को नया कुछ नहीं कहता। और रोता है बहुत जो भी नया आए जहां में, रोता है बहुत जो भी नया आए जहां में, होता है कफस से जो रिहा कुछ नहीं कहता। दरवेश तबीयत मुझे विरसे में मिली है, मैं ठीक गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं कहता। है नेक मनश मेरी नहीं फिक्र कर अपनी, उजड़े हुए लोगों को खुदा कुछ नहीं कहता। ये जो नजर आता है हर एक दाग सलामत, यूं है कि पुराने को नया कुछ नहीं कहता।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। 1:26 हुआ चाहते हैं 2 बजे तक का आपका मेरा साथ है इस महफिल में। 9202540 पर आपकी टेलीफोन कॉल्स हो सकती हैं और इसके साथ साथ आपके पैगाम 4471 पर पैगाम के आगाज़ में 101 यानी 101 ज़रूर लिखिएगा तो ही आपका पैगाम मुझ तक पहुंचेगा।

0: जी जनाब, गाना तो बहुत अच्छा था। और गाना क्या था? गजल थी, नियते शोक भर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। कॉल आपकी जानिब से ड्रॉप होगी जी, दोबारा कोशिश कर सकते हैं आप। और फिल वक्त हम एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, साचन साहब बकरियां आला
0: जी। जनाब
1: साचन बकरियां वाले बोल रहे हैं चकवाल तो।
0: चकवाल से कौन बोल रहे हैं?
1: चकवाल तो साचन साहब बकरियां वाले बोल रहे हैं। बकरियां वाले?
0: बकरियों वाले।
1: हां साचन साहब बकरियां वाले।
0: ठीक है।
1: आप सुनने नहीं आवे बात हो
0: जी, क्या क्या कहें दोबारा कहें?
1: अच्छा मेरे बात गाना अच्छा था तो कोई इलिसी लिया उनकी आवाज।
0: मेरी बात सुने, आप रेडियो सुनते रहते हैं?
1: हाँ रेडियो सुनते हैं यार।
0: और किसको सुनते हैं ज्यादा आप? प्रोग्राम किसका ज्यादा सुन? मुझे लग रहा है जिशान नासिर का प्रोग्राम आप ज्यादा सुनते हैं।
1: यार प्रोग्राम ज्यादा सुने नहीं हो उससे हो दूर जा रहे सुने नहीं आते उससे सुने नहीं आ
0: अच्छा चले ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे?
1: तमाम
0: वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें, आपकी बकरियां भी सलामत रहें, खुश रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।

ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, और आरजू है कि तू यहां आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। जी जलाता हूं और सोचता हूं, रायगा ये हुनर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही लेना सिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं।

हुजूर, मोहब्बत के जज्बे की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन अक्सर सुना करता हूं कि यह इश्क मोहब्बत से हटकर हुआ करता है। हम इंसान जब तक किसी कैफियत से दोचार हो नहीं जाते हैं, तब तक उसको समझ नहीं पाते हैं। और यही फर्क मैं महसूस करता हूं इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में। ये हमने सुन रखा होगा कि इंसान इश्क मजाजी के बना इश्क हकीकी तक पहुंच नहीं सकता। उसकी हकीकत जो मुझे समझ आती है वो यूं है कि इंसान को जज्बे से आशना करना होता है, उस जज्बे की शिद्दत क्या है उसको महसूस करना होता है, उसको जानना होता है, उससे आशनाई हासिल करनी होती है, और फिर समझ पाता है वो कि मोहब्बत क्या है। और शायद वो कैफियत जो इंसान को ऐसी दुनिया में ले जाती है जब लम्हे सदियों पर मुहित हो जाते हैं या सदियां लम्हों में बीत जाया करती हैं, जब वो महसूस करता है कि वो किसी और दुनिया में है, उसको इश्क कहते हैं। बहुत आसान सी तरह करती हैं। जब वो महसूस करता है कि वो किसी और दुनिया में है,

जो हमारी जात के अंदर मुंजमद रहता है और बस किसी तमकिनत के तहत पिघलने लगता है। इश्क हो जाए तो कुछ और कहाँ होता है, कुछ नहीं होता वहाँ, इश्क जहाँ होता है।

जज्बे को समझने की काबिश और फिर इश्क तक पहुंचना, वो इश्क जो दास्तानें लिख दिया करता है, वो इश्क जो बताता है हीर रांझा क्या है, वो इश्क जो बताता है बुल्ले शाह क्या है। हम आम इंसानों की जीस्त, हम आम इंसानों की जिंदगी, हमारे दायरे बहुत महदूद हुआ करते हैं, लेकिन ये जो सोच है और इस सोच पर जो हमारा इख्तियार है, उसकी कोई कैद नहीं है। इरादा और इख्तियार रखते हैं हम दोस्त, हम इंसान, और अपनी सोच से आगे बढ़ जाया करते हैं। और जो गिरफ्त में नहीं आता, जो हमारी सोच की गिरफ्त में नहीं आता, वो इश्क हुआ करता है। नहीं समझ पाएंगे हम फिर भी, और ना मैं समझा पाऊंगा, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और जब कोई डूबने की जसारत कर लिया करता है, हिम्मत कर लिया करता है, तो बस फिर डूबता ही चला जाता है, जब तक के सरापा इश्क हो ना जाए।

कुछ हर्फ थे कुछ नक्श थे, एक जाल सा नक्शानुमा। कुछ हर्फ थे कुछ नक्श थे, एक जाल सा नक्शानुमा। एक आयन था फिर शीन थी, कुछ आग थी कुछ राख थी। कुछ आग थी कुछ राख थी, एक दश्त था एक बहर था, सहरा भी था और प्यास थी। फिर एक खला बेअंत सा, एक बंद गली सा रास्ता, वीरानियां तन्हाइयां, फिर काफ था। फिर सारा मंजर राख था, सब खाक था। कुछ हर्फ थे कुछ नक्श थे, एक जाल सा नक्शानुमा। एक आयन था फिर शीन थी, कुछ आग थी कुछ राख थी। एक दश्त था एक बहर था, सहरा भी था और प्यास थी। फिर एक खला बेअंत सा, एक बंद गली सा रास्ता, वीरानियां तन्हाइयां, फिर काफ था। फिर सारा मंजर राख था, सब खाक था। मेरी नजर के सामने एक तूर सा रोशन हुआ, जब हर्फ बाहम मिल गए। जब हर्फ बाहम मिल गए, फिर लफ्ज का उकदा खुला, वो इश्क था। वो इश्क था, फिर उसके बाद कुछ न था। मिला सफेद हर सफा, कहीं भी जिक्र मन न तू, कहीं पड़ाओ ना सुकून। फकत जुनू जुनू जुनू, कहीं पड़ाओ ना सुकून, कहीं भी जिक्र मन न तू। मिला सफेद हर सफा, फिर उसके बाद कुछ न था। वो इश्क था, फकत जुनू जुनू जुनू।

मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अजल से दिल में मकी सही, वो निगाहें शौक से दूर हैं, लगे जहां से लाख करी सही। हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह वो कहीं सही, हमें आप खींचिए दार पर, आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही। सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। ना हो उन पे कुछ मेरा बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूं, वो मेरे नहीं तो नहीं सही। मुझे बैठने की जगह मिले, मेरी आरजू का भरम रहे, तेरी अंजुमन में अगर नहीं, तेरी अंजुमन के करी सही। जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे उसे हश्र पर ना उठाइए, जो करेंगे आप सितम वहां, वो अभी सही वो यहीं सही। तेरा दर तो हमको ना मिल सका, तेरा दर तो हमको ना मिल सका, तेरी राह गुजर की जमी सही। हमें सजदा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यहीं सही। और उन्हें देखने की जो लौ लगी, तो नसीर देख ही लेंगे हम, वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशीन सही। सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। वक्त करीब आन पहुंचा है कि चंद लम्हों में आपसे इजाजत लेनी होगी, और जाने से पहले हमेशा की तरह चंद जुमले जो काबिश हुआ करती है कि आपकी समातों के तवस्सुत से अपने आप को समझाता चलूं, शामिल करना चाहूंगा। हज़रत, ये तमाम कैफियात जो हम इंसानों में पाई जाती हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ करती हैं। बहुत से जज्बे हम इंसानों को वदियत कर दिए गए जिन पर हमारा बस नहीं है, हमारी ज़ात के अंदर ये कैफियात पाई जाती हैं और बस उभर आती हैं किसी ऐसे वक्त में जब इनकी ज़रूरत हुआ करती है या हम महसूस करते हैं। अगर गौर करें तो हर कैफियत जो हमारी ज़ात के अंदर मौजूद है हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, कुछ ना कुछ बताने के लिए है, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो हसद हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो मुसर्रत हो। ज़रूरत जिस अमर की हुआ करती है वो सिर्फ ये है कि हमें कब खुद को रोकना है, क्योंकि इंसान के इरादा और इख्तियार की कोई कैद नहीं है। हम इंसान बहुत वसत रखते हैं अपने इरादे और इख्तियार में। जब इख्तियार हद से ज्यादा मुयस्सर आ जाए तब क्या करना है, और जब हम इतनी ताकत रखते हों कि हम कुछ भी कर सकते हों तब खुद को कैसे रोकना है। इन जज्बात को कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है उसको इंसानियत कहा जाता है। और जब इंसान समझ जाता है कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ खुद को रोकना है, तो वो इंसानियत की मेराज हुआ करती है। और इस मेराज को पहुँच नहीं पाते हैं हम इंसान बहुत काविश के बावजूद। वो इसलिए कि जस्तजू नहीं पाई जाती हमारे अंदर। जब तक जस्तजू ना हो, जब तक सवाल ना हो, तो जवाब नहीं आया करता। अगर हम गौर करें तो हमारी ज़ात के अंदर बहुत से सवालात हैं जो उभरते रहते हैं, पनपते रहते हैं, और हम इस दुनिया के शोर व गुल में उनको पसे पर्दा डाल दिया करते हैं, उनको उभरने देते नहीं हैं अपने जहन में, लेकिन वो पूरी कुव्वत के साथ हमलावर होते रहते हैं और हम उनको पसे पर्दा डालते रहते हैं, और यूं हमारा वजूद मुजमहिल और निढाल रहता है। हम इस दुनिया को समझ नहीं पाते हैं, हम इसकी हकीकत को समझ नहीं पाते हैं, और फिर जो जैसे चल रहा है बस वैसे ही चलता रहे, फिर वक्त वक्त ही रहता है, फिर लम्हे सदियों पर मुहित नहीं हुआ करते और सदियां लम्हों में नहीं गुजरती। जब इख्तियार रखते हों कि किसी को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं और खुद को भारी जानते हुए, खुद को बासर जानते हुए, खुद को बाला जानते हुए भी खुद को रोक लिया जाए, इसको सब्र कहते हैं। लेकिन हमें तो यूं लगा कि सब्र वो है जब कुछ बन ना पा रहा हो और हम एक अंधेरे कमरे में बैठे आंसू बहाते रहें और उस शख्स को बददुआएं देते रहें, उस इंसान को बुरा भला कहते रहें जिस पर हमारा बस चलता नहीं है, इसको सब्र कहते हैं। ये सब्र नहीं है। सब्र वो होता है जब अपने इख्तियार को, अपने इरादे को, अपनी ज़ात की वसत को हम इस्तेमाल कर सकते हों लेकिन हम खुद को रोक लें। यहाँ होना ना होना है, ना होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए। और खाके दरे जाना ना क्या है कि जब इंसान
हकीकत में समझ जाता है कि वो क्या है। इस कायनात की मोहब्बत हमें नजर आती है, उस खालिक की मोहब्बत हमें नजर आती है जो हर जगह उसने बिखेर रखी है। हमारी आंखों में बसारत देकर इस कायनात में रंग बिखेर दिया, हमारी जबान पर जायके देकर हर शय में मिठास डाल दी, हर फल में मिठास डाल दी। हमें हिस्से लामिसा दे के सूरज की तमकिनत को महसूस करने की सलाहियत दे दी और बादे सबा की ठंडक को हम महसूस कर सकते हैं। गर्ज के क्या कुछ जो इस कायनात में मौजूद है, हमें लगता है कि हमारे वास्ते है, और यकीनन हमारे वास्ते ही है, लेकिन कब ये हमसे मैं हो जाता है हमें मालूम नहीं पड़ता। वो जो एक शख्स जिसको हम बद्दुआ दे रहे होते हैं, क्या सोचकर अपने रब से बात कर रहे होते हैं कि उस शख्स को नेस्त व नाबूद कर दे, ये भूल जाते हैं कि वो रब तो उसका भी है। क्या पता कुछ ऐसा हो जो मैं देख ना पा रहा हूं, कुछ ऐसा हो जो मेरी नजर से हटकर हो। कहीं मैं गलती पर हूं, जब मुझसे गलती हो जाती है तो मैं खुद को खता का पतला कह देता हूं, जब किसी और से हो जाती है तो मैं इतनी बुजुर्ग बाला हस्ती के सामने उसकी शिकायत लेकर चला जाता हूं, ये सोचे बिना कि मेरा ताल्लुक कैसा है उसके साथ। क्या मैंने वो ताल्लुक उस्तवार किया जिस ताल्लुक के बारे में उन्होंने कहा कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, जिस ताल्लुक के बारे में उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरफ चल कर आओ मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, इसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द कुछ ऐसा अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। जो ये ताल्लुक उस्तवार करते हैं वो होते हैं इश्क वाले लोग, वो होते हैं सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले लोग, वो होते हैं अनमता लेहम वाले लोग। और इसके अलावा जो कुछ है वो लफाजी है, वो अल्फाज हैं जो हम सीख लिया करते हैं इस दुनिया में आने के बाद। इश्क की हकीकत को समझना हो तो उन लोगों की सफों में शामिल होना होगा जो इश्क वाले हैं। जो खाके दरे जानाना है, जो अपने हादसों के दुख छुपाए मुस्कुराते हैं, जो बंजर मौसमों में बारिशों के गीत गाते हैं, जो तितली फूल और खुशबू के मौसम साथ लाते हैं, जो जख्मी फाख्ता को घोंसले तक छोड़ आते हैं, जो बिछड़ी कूंज को फिर डार से वापस मिलाते हैं, उसे तन्हाइयों में मौत के दुख से बचाते हैं, जो शहरे बेवफा में भी क्या वादे निभाते हैं, जो घर के हाथ जख्मी राह से कांटे उठाते हैं, वो जिनके हाथ में दिए दुआ के झिलमिलाते हैं, जो अपने नाम से इंसानियत को मोतबर कर दें, मोहब्बत की निगाह ऐसी कि जर्रे को गुहर कर दें, जो पत्थर खाएं देखें मुस्कुराएं दरगुजर कर दें, जो अपनी जात की परछाई से आगे निकल जाएं, किसी की आंख के आंसू सितारों में बदल जाएं, वो जिनको देख के सब दर्द के सूरज पिघल जाएं, वो जिनके अपने पांव में कई गिरदाब होते हैं मगर वो रूह की पाताल तक शादाब होते हैं, वो ऐसे लोग जो हर दौर में नायाब होते हैं, वो ऐसे लोग जो हर दौर में नायाब होते हैं, अभी वो लोग बाकी हैं। और उन लोगों की सफों में शामिल होना होगा तो मोहब्बत करनी होगी, और मोहब्बत के तकाजों में सबसे जरूरी तकाजा के महबूब के महबूब को भी चाहा जाए। अगर हम अपने रब से मोहब्बत के दावेदार हैं तो मोहब्बत करनी होगी उसकी महबूब खलकत से,
زندگی میں جو درکار ہو وہ تقسیم کیجئے، خوشیاں چاہیے تو خوشیاں بانٹیے، آسانیاں چاہیے تو آسانیوں کا سامان پیدا کیجئے، اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبا ہوا کانٹا نکالیا، رب تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا آپ کی زندگی پر۔ کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہونا چیز کو یاد رکھیے گا، اور کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو تو دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہوں گا۔ سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے اتوار کی شب آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ عاطر علی سید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।